नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार का दिन है, साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में। मेरे साथ होगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान की ओर, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 10 बजे। फिर इसी क्रम में रूबरू करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर लिखिए, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: एवो केवाय जयवरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तयवरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं।
0: पण मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी।
4: जमीन पैसा माते बैरा नु नाम एने हपना नु पहलू पगतियो है।
0: इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपरा फैसला खुद लेवानी ताकत।
4: तो आओ बोलो, आज मलीने आवाज उठावो। एटले हंगरी सूर्ये, हंगरी बुने, हंगरी माए आपड़ा हक ने जमीन माते गर्व थकी उभी थई शके।
0: बोनने अधिकार किम की अधिकारस असली ताकत है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावार हंगरे किसान भाई बहनों ने आपनी बोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सब नु स्वागत कर रहा हमारे आसनी कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के भाई बहन आप सब ने खबर हसे कि कार्यक्रम खेतीबाड़ी में नवा नवा विषय में आते हमें रोज से बातें कर रहा ने आ विषय एवा है जिम की आपड़े खेती में काम आवे है। ताजे भी एक नव विषय जुड़ाई रू है। आज नो विषय है आ वरसात ना दाड़ा साली रहे है तो आना में आपड़े जे पशु है इन्होंने बल्ले आपड़े हरा चारा नी व्यवस्था हरते करी शका ने बरसात ने दाड़ा में आपड़े जे पशु है इन्होंने ध्यान आपने हरते राखू है। तड़ा विषय में आज आपड़े बातें तो करंगा पर कार्यक्रम की शुरुआत में आपड़े हमरी लांकित ने मोरे करा आपड़ी बातें। आप सब हमबरतरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

किसान भाई बोन गीत तो आईशु पूरा नणस गीथाते पड़ो सूटा। उम्मीद करा कि आज से जे भी बातें रही कार्यक्रम खेती बाड़ी माध्यम तक की ये बातें आपने गमी होंगा। आपने हमारो आज नो कार्यक्रम केव लगे एना बारे में आप राय सुझाव आली सको अमारे अड़ा पता माते। अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाथे तार हुदी राम राम राम राम, राम।

0: जागृति बुंद, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद एटले मन का कहे की पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वो अणी माटी में जन्मी हूँ, अणी माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया बीज बोया, मैं पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जन्म आते मारो अधिकार किन नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानून ने आ बात मानी है। ना पन्या पूटे एनो हक कोई ले सके, ना रिवाज अना सच ने बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी आपसे ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए श्रोता साथियों पहले मनोरंजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी किस विषय पर बातचीत रहने वाली है। तो साथियों आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: इसके बिल्कुल विपरीत है। वह अक्सर काम टालती रहती है, देर तक सोती है और हर काम के लिए ना कहती है। तीसरी सहेली नंदिनी जो है वो समझदार और शांत स्वभाव की है। वह दोनों की बात ध्यान से सुनती है और सही गलत को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। साथियों, एक दिन सुबह पार्क में इन तीनों के बीच आलस और मेहनत को लेकर एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। रिया कहती है कि आराम करना सबसे अच्छा है, जबकि सिया समझाती है कि मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। इसी बहस के दौरान दोस्तों कई उदाहरण और अनुभव सामने आते हैं जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में सही रास्ता कौन सा है। तो आइए साथियों, इस नाटक के माध्यम से हम समझते हैं। सुबह का समय है, पार्क में हल्की हल्की हवा चल रही है, पेड़ों के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसी पार्क के एक कोने में बेंच पर बैठी रिया बैठी है और जम्हाई ले रही है।
1: उफ, कितना थकाने वाला दिन है। अभी तो सुबह ही हुई है और मुझे पहले से ही आराम करने का मन कर रहा है।
0: अरे रिया, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो दौड़ लगाते हैं।
1: नहीं सिया, मेरा मन नहीं है, मुझे बस आराम करना है।
0: तुम हमेशा यही कहती हो, अभी नहीं बाद में करेंगे।
1: तो क्या हुआ, काम बाद में भी तो किया जा सकता है ना?
0: लेकिन हर काम का एक सही समय होता है रिया।
2: अरे तुम दोनों यहाँ क्या चर्चा कर रही हो?
0: रिया फिर से आलस कर रही है।
1: अरे मैं आलस नहीं कर रही, बस थोड़ा सा आराम कर रही हूँ।
2: आराम और आलस में फर्क होता है।
1: तुम भी सिया की तरह ही बोलने लगी नंदिनी।
2: हाँ, क्योंकि सिया सही कह रही है।
1: तुम लोग हमेशा मेहनत की बात करती रहती हो, क्या जिंदगी में आराम करना गलत है क्या?
0: नहीं रिया, आराम करना गलत नहीं है,
2: लेकिन जरूरत से ज्यादा आराम करना आलस बन जाता है।
1: मुझे तो आलस अच्छा लगता है।
0: अरे रिया, शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही परेशानी का कारण बन जाता है। रिया, क्या तुमने आज का होमवर्क किया?
1: नहीं, मैं सोच रही हूँ कि शाम को कर लूँगी।
2: और अगर शाम को भी मन नहीं हुआ तो?
1: फिर कल कर लूँगी।
0: और अगर कल भी मन नहीं हुआ तो?
1: फिर मुश्किल हो जाएगी।
2: मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो सहेलियाँ रहती थी। एक बहुत मेहनती थी, वह रोज समय पर पढ़ाई करती थी, घर का काम करती थी और खेलती भी थी। दूसरी सहेली हमेशा काम टालती रहती थी। समय बीतता गया और परीक्षा का समय आया। मेहनती लड़की ने अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे पढ़ने चली गई, लेकिन आलसी लड़की को बहुत पछताना पड़ा।
1: यह कहानी तो ठीक है नंदिनी, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता।
2: ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है।
0: रिया, तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है?
1: पैसा।
2: नहीं,
0: सबसे कीमती चीज है समय।
1: समय क्यों?
2: क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं।
0: तुमने किसान को खेत में काम करते देखा है?
1: हाँ देखा है ना।
0: अगर किसान आलस करे तो क्या होगा रिया?
1: फसल खराब हो जाएगी।
2: ठीक वैसे ही विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा तो उसका भविष्य कमजोर हो जाएगा।
1: क्या सच में मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है?
0: हाँ,
2: सिया और रिया, दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने मेहनत से ही सफलता पाई है।
0: बिल्कुल, जब हम मेहनत करते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: कैसे?
2: रिया, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने काम को खुद कर सकते हैं।
1: मुझे लग रहा है कि मैं सच में बहुत आलसी बन गई हूँ।
0: अच्छा, कोई बात नहीं।
2: रिया, अगर हम चाहें तो अपनी आदत बदल सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: रिया, छोटे छोटे कदमों से। हमें करना क्या होगा कि हमें समय पर उठना होगा, रोज थोड़ा पढ़ना होगा, खेलना तो जरूरी है तो हम खेलेंगे भी, और काम को हमें बिल्कुल टालना नहीं है।
1: ठीक है, आज से मैं कोशिश करूंगी कि काम समय पर करूं।
0: हाँ, यही सबसे बड़ा कदम है।
2: और अगर फिर से आलस आए तो खुद को याद दिलाना।
0: क्या?
3: मेहनत ही सफलता की कुंजी है।
1: आज मुझे समझ आ गया कि आलस हमें पीछे ले जाता है
0: और मेहनत हमें आगे बढ़ाती है।
2: रिया, अगर बच्चे छोटी उम्र से ही मेहनत और अनुशासन की आदत को अपनाएं, तो उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है।
3: आओ हम सब मिलकर मेहनत को अपनाएं और आलस को दूर भगाएं।
0: तो श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा नाटक सुना, जिससे श्रोता साथियों इस लंबी बातचीत और उदाहरणों को सुनने के बाद हम ये समझ पाए हैं कि रिया को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे ये समझ में आ गया कि बार बार काम टालना और आलस करना भविष्य के लिए नुकसानदायक

लायक है। सिया और नंदनी दोस्तों उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा रही थी कि मेहनत करना कठिन जरूर लगता है, लेकिन यही आदत जीवन में सफलता दिलाती है। वे बताती हैं कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, और वही रिया अपनी गलती स्वीकार भी करती है और ये तय करती है कि अब वो आलस छोड़कर मेहनत और अनुशासन को अपनाएगी। तो साथियों, अंत में होता यह है कि इन तीनों सहेलियों का ये कहना है कि अगर बच्चे छोटी उम्र से ही मेहनत, समय की कद्र और अनुशासन की आदत डाल ले तो उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है। और यही हमारे आज के नाटक का मुख्य संदेश है कि दोस्तों, आलस हमें पीछे ले जाता है, लेकिन मेहनत हमें सफलता और आत्मविश्वास की ओर आगे बढ़ाती है। तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हुई, और अब मैं जैसा कि देख रही हूँ कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।
1: चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन
1: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपने धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ गंभीर सोच और चिंतन भी जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है, डिग्रियां बढ़ रही है, कोर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लाखों युवा नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कशिश,
0: बिल्कुल
1: सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या केवल पढ़ाई काफी है? क्या केवल अच्छे अंक नौकरी दिला सकते हैं? या क्या केवल अंग्रेजी बोल लेना ही सफलता की गारंटी है?
0: जी हाँ,
1: जवाब है नहीं। श्रोता साथियों, आज कंपनियां ऐसे युवाओं की तलाश कर रही है जो सिर्फ बोलना ही नहीं जानते बल्कि सोच भी सकते हैं, जो केवल जानकारी ना रखते हो बल्कि जानकारी का सही उपयोग करना भी जानते हो।
0: जी हाँ,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे इस विषय के बारे में, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ साथ गंभीर सोचना और चिंतन भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि आज के समय में नौकरी प्राप्त करना केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रह गया है। पहले कंपनियां केवल शैक्षणिक योग्यता को महत्व दिया करती थी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन जैसा कि अब समय बदल चुका है, अब कार्यस्थल की बदलती आवश्यकताओं के कारण युवाओं में कई प्रकार की कौशल की मांग भी बढ़ गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संचार कौशल जो होता है वो उसकी तलाश की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक जो सोच होती है उसको भी महत्वपूर्ण माना जाता है और चिंतन करना भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं युवा साथियों कि ये जो आज का विषय है हमारा कि नौकरी के लिए हमें कम्युनिकेशन के साथ साथ कुछ संचार कौशल भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में जागृति जी किसी युवा के पास अच्छी शिक्षा होती है लेकिन विचारों का स्पष्ट रूप नहीं होता है तो अवसर होने के कारण भी वे पीछे रह जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, अगर हम संचार कौशल की बात कर रहे हैं तो श्रोता साथियों, किसी भी नौकरी में सबसे पहले हमारी पहचान हमारे संवाद से होती है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे हम अपनी बात को रखते हैं, कैसे दूसरों को सुनते हैं, ये सारी बातें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: इंटरव्यू में अक्सर उम्मीदवार का ज्ञान बाद में और उसका व्यवहार पहले देखा जाता है। कशिश, यदि हमारे पास अच्छी योग्यता है लेकिन हम उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते तो हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है। श्रोता साथियों, कम्युनिकेशन केवल बोलना नहीं होता बल्कि सुनना, समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही अगर नौकरी में कम्युनिकेशन के महत्व को हम जाने तो देखते हैं कि आज लगभग हर क्षेत्र में कर्मचारियों को ग्राहकों, सहकर्मियों और अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में श्रोता साथियों हमारा मन कई बार निराशा की गहराई में चला जाता है क्योंकि हम उनसे ठीक ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब हमारा मन उत्साहित होता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हमें लगने लगते हैं, लेकिन वहीं जब हमारा मन उदास होता है तो छोटी सी चुनौती भी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए युवा साथियों केवल शरीर को मजबूत बनाना पर्याप्त नहीं होता बल्कि इसमें मन को भी मजबूत बनाना जरूरी है।
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि केवल बोलना काफी नहीं है, सोचने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी कंपनी में अचानक कोई समस्या आ जाती है, मशीन बंद हो जाती है, ग्राहक शिकायत कर देते हैं या कोई नई चुनौतियां हमारे सामने आ जाती है।
0: जी जी,
1: ऐसे समय में कंपनी को केवल बोलने वाले लोग नहीं चाहिए होते कशिश, बल्कि ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो समस्या का समाधान कर सके।
0: बिल्कुल,
1: यहीं पर काम आती है क्रिटिकल सोच यानी कि आलोचनात्मक सोच। श्रोता साथियों, क्रिटिकल सोच का मतलब है किसी भी परिस्थिति को समझना, तथ्यों का विश्लेषण करना और सही निर्णय लेना।
0: जी,
1: ये बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार करने की बजाय उसके पीछे के कारणों को समझने की क्षमता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, और हम देखते हैं कि जब नौकरी में कम्युनिकेशन होता है तो इसके ढेर सारे लाभ होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, ग्राहकों का विश्वास जीतना हमारे लिए आसान हो जाता है युवा साथियों, और इससे हमारे नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है।
1: जी हाँ,
0: कई बार तो जागृति जी ऐसा भी देखा जाता है कि समान योग्यता वाले दो उम्मीदवारों में से वही चयनित होता है जिसकी संवाद क्षमता बेहतर होती है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं युवा साथियों कि कार्यस्थल पर प्रतिदिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर समस्या का समाधान किताबों में हमें नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पर जोर देना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे कि समस्याओं का तेज समाधान निकालना, समस्या आने पर बेहतर निर्णय क्षमता का होना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, क्योंकि जागृति जी जो कर्मचारी केवल निर्देशों का पालन करते हैं उसकी तुलना में समस्या का समाधान खोजने वाला कर्मचारी अधिक मूल्यवान माना जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं, हम बात कर रहे हैं नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ साथ गंभीर सोच और चिंतन भी क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारे लिए गंभीर सोच और चिंतन कितना जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि श्रोता साथियों, अगर गंभीर सोच के बारे में बताएं, चिंतन के बारे में बताएं, तो गंभीर सोच के साथ साथ चिंतन भी बहुत जरूरी है। चिंतन का अर्थ है अपने अनुभव से सीखना, दिन भर के कार्यों पर विचार करना, अपनी गलतियों को पहचानना और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना।
1: जी हाँ,
0: जो युवा चिंतन करते हैं, कशिश में लगातार विकसित होते रहते हैं। वे अपनी असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे गहरा चिंतन ही छिपा होता है श्रोता साथियों। और कहा गया है कि जो स्वयं पर विचार करता है वही स्वयं को निखारता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, हम चिंतन के महत्व को जान पाए। अब यही अगर बात करें कि हमारे युवा साथी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो श्रोता साथियों, सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है कि आपको सुनना सीखना है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ दोस्तों, पढ़ने की आदत भी आप विकसित करें, जैसे कि समाचार पत्र आप पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें और सामान्य ज्ञान को बढ़ाएं। इससे जागृति जी, हमारी सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हम हर बात को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल कशिश। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सोच और चिंतन के बारे में, तो श्रोता साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज अधिकांश कंपनियां केवल डिग्री नहीं देखती, वो ये देखती है कि उम्मीदवार टीम में कैसे काम करता है, समस्याओं को कैसे हल करता है, नए विचार कैसे देता है, अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करता है और सीखने की इच्छा कितनी रखता है।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि श्रोता साथियों, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल सोच दोनों मिलकर एक सफल कर्मचारी बनाते हैं। यदि किसी के पास केवल ज्ञान है कशिश, लेकिन वो संवाद नहीं कर पा रहा है, तो उसकी क्षमता सीमित हो जाएगी।
1: जी हाँ।
0: और यदि कोई केवल बोल सकता है लेकिन सोच नहीं सकता, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक भी नहीं टिक पाएगा। इसीलिए श्रोता साथियों, कहा गया है कि सफलता वही जन्म लेती है जहाँ संवाद और विचार साथ में चलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छी बात यह है कि कौशल जन्म से नहीं आते, इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया था कि पढ़ने की आदत, प्रश्न पूछना, चर्चा में भाग लेना, अपनी बात को लिखना, आत्मचिंतन करना और गलतियों से सीखना। तो श्रोता साथियों, हम आप इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि नौकरी केवल पद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: और जिम्मेदारी निभाने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि समझ, विवेक और संवाद की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: आज हम देख रहे हैं कशिश कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई तकनीकें और बदलती कार्यस्थल नई चुनौतियां ला रहे हैं। ऐसे समय में अगर युवा आगे बढ़ेंगे, जो सीखने के लिए तैयार होंगे, सोचने की आदत रखेंगे और प्रभावी संवाद करेंगे, अपने भीतर प्रश्न की आदत विकसित करेंगे, नई चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने विचारों को निखारेंगे, तो वो हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, यदि आप अपने करियर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो केवल परीक्षा पास करने पर ध्यान न दें बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी विकसित करें।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि अच्छा बोलना आप सीखिए, ध्यान से सुनना सीखिए और तर्क के साथ सोचना सीखिए।
0: बिल्कुल।
1: हर दिन श्रोता साथियों, आत्मचिंतन की आदत विकसित कीजिए, क्योंकि ये गुण आपको केवल नौकरी दिलाने में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करेगा।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं जागृति जी कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में नौकरी प्राप्त करने और उसमें सफल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ चिंतन के संतुलित विकास का होना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में कम्युनिकेशन व्यक्ति को अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना सिखाता है और जो गंभीर सोच होती है वो सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है।
0: बिल्कुल।
1: और चिंतन साथियों, व्यक्ति को निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ाता रहता है। ऐसे में जो युवा इन तीनों गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वे न केवल बेहतर कर्मचारी बनते हैं बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि नौकरी पाने के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है श्रोताओं। अच्छा कम्युनिकेशन हमें लोगों से जोड़ता है, गंभीर सोच हमें समस्याओं का समाधानकर्ता बनाती है और चिंतन हमें लगातार बेहतर इंसान बनाती है। जब ये तीनों गुण एक साथ मिल जाते हैं कशिश, तब सफलता केवल सपना नहीं रहती बल्कि वास्तविकता बन जाती है।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाइए, अपनी सोच को गहरा बनाइए और अपने चिंतन को जीवन की दिशा बनाइए, क्योंकि नौकरी केवल हाथों के कौशल से नहीं बल्कि विचारों की ताकत से भी मिलते हैं।
1: जी
0: कहा
1: हाँ।
0: गया है कि अच्छा संवाद पहचान दिलाता है, गहरी सोच सम्मान दिलाता है और सतत चिंतन सफलता की नई उड़ान दिलाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हमारे युवा साथियों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले आपको विषय से अवगत कराया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी चर्चा का विषय रहेगा, गांव की चौपाल लोकतंत्र को मजबूती किस तरह से प्रदान करती है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, हम देखते हैं कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए भारत के लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति भी गांवों में ही बसती है। श्रोता साथियों, लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान करना नहीं होता है, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी, संवाद, पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: इन सभी मूल्यों को मजबूत बनाने में गांव की चौपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
0: बिल्कुल, अंजलि चौपाल केवल एक जगह नहीं है बल्कि विचारों का संगम है, अनुभव का विद्यालय है और सामाजिक चेतना का केंद्र है।
1: बिल्कुल,
0: बरगद या पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर जब गांव के लोग अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं, तब लोकतंत्र का सबसे सुंदर स्वरूप हमें दिखाई देता है।
1: जी जी
0: श्रोताओं, लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए, लेकिन ये तभी संभव है अंजलि, जब जनता जागरूक हो,

0: जनता की भागीदारी होती है। जब लोक जागृति जी अपने गांव की समस्याओं और आवश्यकताओं पर खुलकर चर्चा करते हैं, तब वे विकास प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनते हैं। चौपाल लोगों को यह अवसर प्रदान करती है, यहाँ किसान, मजदूर, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इससे लोगों में यह विश्वास बढ़ता है कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है और उनके सुझावों का भी मूल्य है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि गांव के चौपाल लोगों को बोलने का साहस देती है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो किसी बड़े मंच पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वे चौपाल में खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव सामने रखते हैं।
0: जी जी,
1: ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि हर आवाज को महत्व मिले। श्रोताओं, किसी भी गांव के विकास की शुरुआत संवाद से होती है। जब तक लोग समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समाधान कैसे निकलेगा?
0: बिल्कुल,
1: चौपाल गांव के लोगों को एक साथ बैठने, सामूहिक रूप से सोचने का अवसर देती है। पानी की समस्या हो, सड़क निर्माण का मुद्दा हो, विद्यालय की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता, इन सब विषयों पर चौपाल में चर्चा होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, चौपाल इन समस्याओं के समाधान खोजने का एक प्रभावी मंच है। जब लोग एक साथ बैठकर विचार करते हैं, तब सामूहिक बुद्धि और अनुभव के आधार पर बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे न केवल श्रोता साथियों समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि लोगों में भी जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। ग्राम पंचायत और चौपाल का संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है और चौपाल जनता और पंचायत के बीच की एक मजबूत सेतु का कार्य करती है।
1: जी हाँ,
0: पंचायत की योजनाएं और निर्णय चौपाल के माध्यमों से ही लोगों तक पहुंचते हैं और वहीं जनता की समस्याएं और सुझाव चौपाल के माध्यम से पंचायत तक पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बन पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं गांव की चौपालों को लेकर, ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है कि गांव की चौपाल किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। श्रोता साथियों, चौपाल सामाजिक एकता को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब अलग अलग वर्गों, समुदायों और विचारों के लोग एक साथ बैठते हैं जागृति जी, तो आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। इससे सामाजिक दूरी कम होती है और भाईचारे की भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब समाज में एकता और सद्भाव हो। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जागरूक नागरिकों का होना आवश्यक है। चौपाल लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है और इसी के साथ जागृति जी, सरकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुँचने में चौपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत होते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम चौपाल की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र केवल अधिकारों की बात नहीं करता है, बल्कि ये कर्तव्यों की भी बात करता है। श्रोताओं, चौपाल लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक बनाती है। यहाँ लोग सीखते हैं अंजलि कि केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, ग्राम पंचायत और चौपाल का रिश्ता बहुत गहरा होता है। पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। चौपाल पंचायत की ताकत है। चौपाल के माध्यम से लोगों की आवाज पंचायत तक पहुँचती है और पंचायत की योजनाएं लोगों तक पहुंचती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अंजलि कि चौपाल जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत पुल का काम करती है।
0: बिल्कुल,
1: जब पंचायत के निर्णयों पर चौपाल में चर्चा होती है तब पारदर्शिता बढ़ती है। जैसा कि अभी आपने बताया था, लोग जान पाते हैं कि गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कितना बजट आया है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। इससे जवाबदेही बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, युवा वर्ग भी लोकतंत्र का भविष्य है। चौपाल युवाओं को नेतृत्व, संवाद और सामाजिक जिम्मेदारी सीखने का अवसर प्रदान करती है। युवा नई तकनीकों, नवाचारों और विकास के नए विचारों को गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब युवाओं की ऊर्जा और अनुभव का सही उपयोग होता है तब गांवों का विकास और तेजी से संभव होता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि ग्राम विकास योजनाओं की सफलता भी जन भागीदारी पर ही निर्भर करती है। चौपाल लोगों को विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें तय करने का अवसर देती है। इससे जागृति जी, विकास कार्य वास्तविक जरूरतों के अनुसार होते हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही लोग विकास कार्यों की निगरानी भी करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितता पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जब लोग साथ बैठते हैं तो आपसी दूरी भी कम होती है और विश्वास भी बढ़ता है। यही विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूत भी करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, चौपाल हमें यही सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके जागरूक नागरिक होते हैं। चौपाल नागरिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ लोगों को सरकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक अधिकारों की जानकारी मिलती है।
0: जी जी,
1: जानकारी ही जागरूकता का पहला कदम है और जागरूक नागरिक ही अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जब महिलाएं अपने अनुभव और विचार साझा करती है तब समाज के बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और परिवार कल्याण जैसे विषय, इन सब विषयों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी होती है अंजलि। महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति लोकतंत्र को और अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाती है। इसीलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि तकनीक से जुड़े हुए आज हमारे जो श्रोता साथी है, वे नई सोच, नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे। यदि युवा चौपाल से जुड़ेंगे तो गांव में नई ऊर्जा भी आएगी। वे डिजिटल सेवाएं, आधुनिक खेती, स्वरोजगार और शिक्षा के नए अवसरों की जानकारी भी गांव तक पहुंचा पाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था।
1: बिल्कुल,
0: उनका मानना था कि मजबूत गांव ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। चौपाल ग्राम स्वराज की भावना को साकार करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह लोगों को आत्मनिर्भरता, सहयोग और सामूहिक नेतृत्व की दिशा में प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इस बात की है जागृति जी कि चौपाल की परंपरा को केवल बनाए ही नहीं रखा जाए, बल्कि उसे और अधिक सशक्त बनाया जाए। चौपालों में महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी, संवाद, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। जब हर व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा तब लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे श्रोताओं कि यदि हर गांव में सक्रिय चौपाल होगी तो ग्राम सभा मजबूत होगी। ग्राम सभा मजबूत होगी तो पंचायत भी मजबूत होगी, और पंचायत मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तब देश का विकास और भी तेजी से होगा। तो साथियों याद रखिए, लोकतंत्र की जड़ें दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं बल्कि हमारे गाँव में फैली हुई है। चौपाल उन जड़ों को सींचने का कार्य करती है, इसलिए चौपाल को जीवित रखना, सक्रिय रखना और मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम अपने गांव की चौपाल को संवाद, सहयोग और विकास का केंद्र बनाएं। हम अपनी बात भी रखेंगे, दूसरों की बात भी सुनेंगे, क्योंकि जहां संवाद होता है वहां समाधान जन्म लेते हैं और जहां जन भागीदारी होती है वहीं सच्चा लोकतंत्र फलता फूलता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ हम विदा लेते हैं। बस अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जो ग्रामीण लोकतंत्र, स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, ये उदाहरण बताता है कि जब लोग एकजुट होकर अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी उठाते हैं अंजलि, तब लोकतंत्र केवल व्यवस्था नहीं रहता बल्कि जनशक्ति का सशक्त माध्यम भी बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये हमें सिखाता है कि चौपाल और ग्राम सभा केवल चर्चा के मंच नहीं है बल्कि परिवर्तन की शुरुआत करने वाले केंद्र भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है। बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो। याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
2: मनीषा और कशिश, आज हम कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल,
2: जो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या, हमारा स्वास्थ्य, हमारा व्यक्तित्व, इन सारी चीजों को निखारता है।
1: जी हाँ,
2: आज हम बात करने वाले हैं सुबह की सकारात्मक शुरुआत जो है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुंचाती है।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि विज्ञान अनुभव दोनों से सिद्ध बात है। सुबह
1: हाँ।
2: का समय प्रकृति का सबसे शांत, स्वच्छ और ऊर्जावान समय माना जाता है। इस समय कशिश और मनीषा वातावरण में ताजगी बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
2: पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है, हवा अपेक्षाकृत स्वच्छ होती है और मन में नई ऊर्जा भी भरी हुई रहती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें हमारे श्रोता साथियों के साथ होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें यहाँ पर पहले।
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम विषय से आपको रूबरू करा चुके थे और बातचीत की शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से सुबह की जो शुरुआत है सकारात्मक सोच के साथ अगर हम करते हैं तो उसके कई सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। मनीषा और कशिश, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं और सुबह जल्दबाजी में उठकर सीधे काम में लग जाते हैं। इसका असर श्रोता साथियों केवल हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मन, सोच, कार्य क्षमता और रिश्तों पर भी पड़ता है। इसलिए यदि हम अपनी सुबह को व्यवस्थित और सकारात्मक बना लें तो यह पूरे दिन के स्वास्थ्य की मजबूत नींव बन सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि सुबह का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।
2: बिल्कुल,
1: तो साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद में सुबह के समय को अत्यंत पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। देखते हैं कि सूर्योदय से पहले या उसके आसपास का समय शरीर और मन को संतुलित करने के लिए जरूरी माना जाता है।
2: बिल्कुल
1: साथियों, इसी समय शरीर विश्राम की अवस्था से सक्रिय अवस्था की ओर बढ़ता है।
2: जी हाँ,
1: रात भर आराम करने के बाद हमारा जो मस्तिष्क है वो नई जानकारी ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अंजलि जी और मनीषा, शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे सक्रिय होती है और यदि इस समय हम अच्छी आदतों को अपना ले तो उनका लाभ पूरे दिन हमें मिलता है।
2: बिल्कुल
1: हाँ। साथियों, सुबह की शुरुआत केवल जल्दी उठने का नाम नहीं है, इसका अर्थ है शांत मन से दिन की शुरुआत करना, स्वयं के लिए कुछ समय निकालना, अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करना, साथ ही सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करना।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि सकारात्मक शुरुआत का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। श्रोता साथियों, इसका अर्थ है कि हम दिन की शुरुआत ऐसे विचारों और आदतों के साथ करें जो हमें मानसिक रूप से मजबूत, शांत और उत्साहित बनाए रखें।
0: बिल्कुल,
2: यदि श्रोता साथियों सुबह उठते ही हम शिकायत, तनाव या मोबाइल या नकारात्मक समाचार देखने लगे तो उसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ सकता है। लेकिन यदि हम मुस्कुराकर, कृतज्ञता, प्रार्थना, गहरी सांस लेकर और अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करी तो हम देखते हैं कि हमारा दिन है वो अधिक संतुलित रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि सुबह की शुरुआत का मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो श्रोता साथियों, मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार होता है।
2: जी हाँ।
0: जब मन शांत होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और काम में मन लगता है।
2: बिल्कुल,
0: सुबह कुछ मिनट श्रोता साथियों अपने लिए निकाले, जैसे कि ध्यान करना, प्रार्थना करना, प्रेरणादायक विचार पढ़ना और शांत वातावरण में बैठना तनाव को कम करने में मदद करता है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दिन भर उत्साह बना रहता है।
2: जी हाँ।
0: सुबह जल्दी उठने वाले लोग अक्सर अधिक सक्रिय रहते हैं, वे नियमित व्यायाम करते हैं, योग, टहलना, हल्की शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकाल पाते हैं। इससे शरीर में रक्त संचार

0: जुड़ाव भी बढ़ता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, सुबह की सकारात्मक शुरुआत हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है। कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमने जाना था कि सुबह का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमने जाना था कि सकारात्मक शुरुआत का क्या अर्थ है, सुबह की शुरुआत ही वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है। श्रोता साथियों, यही अगर बात करें कि सुबह का शांत वातावरण हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सुबह का समय अपेक्षाकृत शांत होता है। इस समय शोर शराबा कम होता है, इसलिए मन भी अधिक एकाग्र रहता है। देखते हैं कि इस समय विद्यार्थी पढ़ाई कर सकते हैं, किसान दिन की योजना बना सकते हैं, गृहिणियां बिना तनाव के दिन की शुरुआत कर सकती हैं, और नौकरी वाले लोग भी स्वयं के लिए इस समय अपने लिए समय निकाल सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए नियमित प्रयास आवश्यक होते हैं। सबसे पहले रात को समय पर सोने की आदत डालें, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाएं और उठते ही कुछ मिनट शांत बैठें। जल्दबाजी में दिन की शुरुआत करने के बजाय स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी होता है। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें, प्रतिदिन 5 मिनट गहरी सांस लें, 5 मिनट प्रार्थना करें या 10 मिनट टहले, धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। श्रोता साथियों, याद रखिए कि जीवन में बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे अच्छे निर्णयों से शुरू होते हैं। सुबह का 1 घंटा यदि हम अपने स्वास्थ्य, मन और सकारात्मक सोच को दें तो इसका लाभ पूरे दिन ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में दिखाई देता है। सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम बीते हुए दिन की गलतियों को पीछे छोड़कर नए उत्साह, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है और स्वयं को बेहतर बनाने का नया संदेश भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि साथियों, सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण और कृतज्ञता भी काफी जरूरी है।
3: बिल्कुल।
1: क्योंकि दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव से अगर हम करते हैं अंजलि जी, तो देखते हैं कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है।
3: बिल्कुल।
1: अपने श्रोता साथियों, जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति आभार आपको व्यक्त करना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच के साथ दिन शुरू करते हैं तो मन में आशा, आत्मविश्वास बढ़ता है
3: जी।
1: और छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार व्यक्त करना मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है
3: जी।
1: साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, जैसे कि रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। सुबह उठकर 1 या 2 गिलास सामान्य हल्का गुनगुना पानी पीने से शरीर को ताजगी मिलती है साथियों।
3: बिल्कुल।
1: इससे पाचन क्रिया सही रहती है और दिन भर शरीर बेहतर ढंग से कार्य कर पाता है।
3: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल कशिश। यही अगर बात करें कि खुली हवा में कुछ समय निकालना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यदि संभव हो तो घर से बालकनी में जाएं, आंगन में या खेत या बगीचे में आप समय बिता सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ताजी हवा और शांत हवा वातावरण और मन और दोनों को सुकून देती है। पक्षियों की चहचहाट सुनना और हरियाली को देखना हमारे मन को प्रसन्न करता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे, इस समय हमें योग भी करना है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का माध्यम नहीं है बल्कि मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने का तरीका है।
1: बिल्कुल।
0: नियमित योग करने से शरीर सक्रिय रहता है और मानसिक तनाव है वो भी कम होता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, कुछ समय योगासन जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और वज्रासन नियमित रूप से किए जाएं, इनके अभ्यास है वो हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं।
3: बिल्कुल।
2: यही अब बात आती है कि गहरी और नियंत्रित श्वास का अभ्यास मन को शांत करने में सहायक होता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और गहरी सांस लेने जैसे सरल अभ्यास ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति पाने में मदद कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से दिन भर तरोताजा महसूस किया जा सकता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सुबह की सैर जो है वो शरीर को सक्रिय रखने का आसान और प्रभावी तरीका है। नियमित रूप से पैदल चलने से शरीर में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है और दिन भर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। यदि पार्क उपलब्ध न हो तो घर की छत, आंगन या आसपास सुरक्षित स्थान पर भी कुछ देर हम टहल सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम हमारे श्रोता साथियों से कह सकते हैं कि सुबह की अच्छी आदतें किसी दवा से कम नहीं होती साथियों। इनके लिए अधिक खर्च भी करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल नियमितता और इच्छा शक्ति जरूरी होती है।
3: जी हाँ।
1: यदि आप श्रोता साथियों प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने शरीर और मन के लिए निकालेंगे तो आप अधिक स्वस्थ भी रह पाएंगे, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
3: जी हाँ।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
2: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज से ही हम सभी को यह संकल्प लेना है कि कल की सुबह से नहीं बल्कि आने वाली हर सुबह से अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हम लेकर आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: हम समय पर उठेंगे साथियों, अपने शरीर और मन का सम्मान करेंगे, सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ श्रोता साथियों, अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हिती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का जो विषय रहने वाला है वो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा विषय जो केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारे व्यवहार की असली परीक्षा है। आज का विषय है कि माफी मांगना आसान है लेकिन गलती सुधारना मुश्किल है।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी श्रोता साथियों जीवन में कभी न कभी गलती करते हैं। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, कभी जल्दबाजी में तो कभी गुस्से में तो कभी अहंकार में तो कभी बिना सोचे समझे हम ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे परिवार, दोस्तों, समाज और रिश्तों पर भी पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: जब गलती का एहसास होता है तब अक्सर हम कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन क्या केवल माफी मांग लेने से ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? क्या टूटा हुआ विश्वास तुरंत जुड़ जाता है कि क्या किसी के दिल पर लगे घाव केवल सॉरी शब्द बोल देने से भर जाते हैं? तो शायद नहीं, क्योंकि माफी मांगना कुछ सेकंड का काम है
0: जी,
1: लेकिन गलती को सुधारना कई दिनों, महीनों और कभी कभी वर्षों की मेहनत मांगता है। आज के इस कार्यक्रम में हम यही समझेंगे कि माफी का वास्तविक अर्थ क्या है और गलती सुधारने का क्या महत्व है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी जी,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, माफी मांगना आसान है लेकिन गलती सुधारना मुश्किल।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पुण्य नहीं होता। हर इंसान ने कभी न कभी कोई छोटी या बड़ी गलती की होती है।
1: जी जी।
0: गलती करना मानव स्वभाव का हिस्सा है श्रोता साथियों, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना और फिर से उसे सुधारने का साहस करना हर किसी में नहीं होता। आज के समय में अक्सर लोग किसी को ठेस पहुंचाने, गलत निर्णय लेने या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बाद केवल एक शब्द बोल देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो है माफ कीजिए, कहकर श्रोता साथियों मान लेते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अंजलि जी, वास्तविकता यह है कि केवल माफी मांग लेने से हर समस्या समाप्त नहीं होती। विश्वास टूट जाए, किसी के मन को आहत हो जाए या किसी का नुकसान पहुंच जाए श्रोता साथियों, तो उसे पहले जैसा बनाने में समय लगता है, धैर्य लगता है, निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि माफी मांगना आसान है लेकिन उसे सुधारना मुश्किल।
1: बिल्कुल मनीषा, जीवन सीखने का नाम है। जो काम करेगा उससे कभी ना कभी गलती होगी ही। गलती करना इंसान की जो है वो प्रकृति होती है। लेकिन वही इंसान महान बनता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और उसे सुधारने का साहस भी रखता है। श्रोता साथियों, बहुत से लोग गलती होने पर बहाने बनाने लगते हैं। कोई परिस्थितियों को दोष देता है तो कोई दूसरे व्यक्ति

0: जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि माफी एक औपचारिक शब्द नहीं है साथियों। सच्ची माफी वह है जिसमें व्यक्ति अपनी गलती को पूरे मन से स्वीकार करे, उसके लिए पछतावा महसूस करे और यह संकल्प ले कि वह भविष्य में कभी उस गलती को नहीं दोहराएगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि माफी केवल दिखावे या परिस्थिति से बचने के लिए है श्रोता साथियों, तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि गलती सुधारने के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म बदलने पड़ते हैं।
0: जी हाँ,
1: अपनी आदतें बदलनी पड़ती है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है और अपने व्यवहार पर लगातार काम करना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी कठिन चीज होती है।
0: बिल्कुल।
1: आज बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन वही गलती अगले दिन फिर दोहरा देते हैं। ऐसी माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता श्रोता साथियों। हम देखते हैं कि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकती है। एक झूठ, एक धोखा, एक गलत व्यवहार सालों का विश्वास तोड़ सकता है।
0: जी हाँ।
1: माफी मिल जाती है, लेकिन भरोसा लूटने में बहुत समय लगता है। कई बार लोग बाहर से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनके मन में दर्द भरा रहता है। इसलिए गलती करने से पहले सोचना और गलती होने पर उसे सुधारना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सच्ची माफी व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है। यह अहंकार को छोड़कर विनम्र बनने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, सच्ची माफी का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। हम देखते हैं साथियों कि मनुष्य से गलती कई कारणों से हो सकती है। कभी कभी जल्दबाजी में हो जाती है, कभी अधूरी जानकारी के कारण हो जाती है, कभी हम देखते हैं कि गुस्से में हो जाती है, कभी लालच या अहंकार की वजह से हो जाती है श्रोता साथियों, तब तो कभी दूसरों के प्रभाव में आकर हम गलत निर्णय ले बैठते हैं।
1: जी जी।
0: हम देखते हैं कि आज के युवा कई बार बिना पूरी जानकारी के सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कुछ भी गलत साझा कर देते हैं। बाद में अंजलि जी, हम देखते हैं कि उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है।
1: हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, तब तक नुकसान हो चुका होता है, इसलिए हर निर्णय को सोच समझ कर ले और आगे सोच कर ही हमें आगे के कार्य करने हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, घर वह जगह है जहाँ सबसे अधिक रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: जी।
1: माता पिता बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं, बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी करने लगते हैं, भाई बहन मन मुटाव हो जाता है। यदि हर बार केवल सॉरी बोलकर बात जो है वो खत्म कर दी जाए, तो व्यवहार जो है वो वही रह जाते हैं और समस्या कभी खत्म नहीं होती है।
0: जी हाँ।
1: परिवार मजबूत तब बनता है श्रोता साथियों, जब हर सदस्य अपनी गलती से सीखता है। एक कर्मचारी यदि बार बार लापरवाही करे और हर बार माफी मांग ले, तो क्या संस्था आगे बढ़ पाएगी? यदि कोई अधिकारी जनता से गलत व्यवहार करे और केवल माफी मांगे लेकिन अपनी कार्यशैली न बदले, तो क्या लोगों का विश्वास वापस आ पाएगा?
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, यदि समाज में लोग नियम तोड़ते रहें और बाद में माफी मांगते रहें, तो क्या आवश्यक जो स्थिति है वो ठीक हो पाएगी? नहीं। इसलिए सुधार ही असली जिम्मेदारी है।
0: हाँ।
1: कार्यस्थल और समाज भी यह सिद्धांत लागू होता है कि किस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें हमेशा पालन करने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, मान लीजिए श्रोता साथियों, कि किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, बाद में उसने माफी मांग ली, क्या केवल माफी से विश्वास तुरंत आ जाएगा? शायद नहीं श्रोता साथियों। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलती उसे पल भर में तोड़ सकती है। उसी तरह रिश्ते, सम्मान, प्रतिष्ठा भी वर्षों तक बनते हैं। हम देखते हैं कि गलती के कारण सारे रिश्ते हमारे हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं। तो श्रोता साथियों, हर समय हमें कोई भी बात बोलने से पहले हमें सोचना है, सही निर्णय लेने हैं, उसी के बाद हमें उस बात को सामने वाले के सामने रखना है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बनी रहिएगा, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में है।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि माफ़ी मांगना आसान होता है, लेकिन जो हमने गलती की होती है उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि गलती सुधारने के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें अपनी गलती को स्वीकार करना होगा, दूसरा बहाना बनाना बंद करना होगा, और तीसरा है जिससे गलती हुई है उसके नुकसान को समझे, चौथा है अपने व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाएं, और उसके बाद वही गलती दोबारा न दोहराने का संकल्प लें। यही सच्चे पश्चाताप की पहचान होती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि यदि बच्चे कोई गलती करते हैं तो केवल डांटना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें समझाना है चाहिए कि किस तरीके से अगर गलती आपसे हो गई है तो आप उसे स्वीकार करें, और गलती स्वीकार करना अच्छी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात ये होती है कि उसे दोबारा फिर से न दोहराएं, क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र से जिम्मेदारी का महत्व सिखाना हमारे लिए जरूरी है, और यही संस्कार भविष्य में उन्हें बेहतर नागरिक बनाने में भी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गलती सुधारना इसलिए कठिन है साथियों क्योंकि इसके लिए केवल शब्द नहीं बल्कि कर्मों की भी आवश्यकता होती है। यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की तो केवल परीक्षा के दिन वो पछतावे से उसका परिणाम है वो बदल नहीं सकता।
0: बिल्कुल
1: उसी तरह हम देखते हैं कि मेहनत करके अपनी पूरी उससे हम देखते हैं श्रोता साथियों कि मेहनत करके हम अपनी पूरी परीक्षा की तैयारी है वो कर सकते हैं। यदि किसी किसान ने समय पर खेती की देखभाल नहीं की तो श्रोता साथियों बाद में केवल अफसोस करने से अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल
1: मौसम के अनुसार उसे सावधानियां रखनी होगी और मेहनत करनी होती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि यदि किसी कर्मचारी ने अपने काम में लापरवाही की तो केवल माफी मांगने से कुछ सही नहीं होगा बल्कि बेहतर काम करके वह दोबारा विश्वास जीत सकता है। यही कारण है गलती सुधारने में समय धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, जिस दिन इंसान अपनी गलती से सीखना शुरू कर देता है ना, उसी दिन उसके व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। गलती हमें कमजोर नहीं बनाती, गलती से हमें सीखना होता है, और गलती जो है हमें कई ऐसी चीजें सिखाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माफी मांगना विनम्रता होती है श्रोता साथियों, लेकिन गलती सुधारना चरित्र की पहचान होती है। जीवन में हम सभी ने कभी न कभी कोई न कोई तो गलती की ही होती है।
1: बिल्कुल
0: यह हमारी इंसान की पहचान है, लेकिन हमारी असली पहचान इस बात से बनती है श्रोता साथियों कि गलती के बाद हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या हम केवल माफ कर दीजिए कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं, या फिर अपने व्यवहार, सोच और कर्म में ऐसा बदलाव लाते हैं कि वह गलती दोबारा न हो जाए। याद रखिए कि शब्दों की अपनी शक्ति होती है, लेकिन कर्मों का प्रभाव उससे कहीं अधिक गहरा होता है। एक सच्ची माफी वही है जो बदलते हुए व्यवहार में दिखाई दे। जब हमारी आदतें बदलती हैं, जब हमारा स्वभाव बेहतर होता है, जब हमारे कारण किसी को फिर से दुख न पहुंचे, तभी हमारी माफी सार्थक बनती है। इसलिए हमें आज से ही एक छोटा सा कदम उठाना होगा। यदि हमसे कोई गलती हो या हम किसी को परेशान करते हैं तो हमें उससे इन सारी चीजों को छिपाना नहीं है, उससे भागना नहीं है, केवल औपचारिक तौर पर माफी मांगना ही सीमित नहीं है। हमें उस गलती को सुधारने का साहस दिखाना है, क्योंकि जीवन में सम्मान, विश्वास और रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि निरंतर अच्छे कर्मों से कमाए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा है वो देश के भविष्य है। यदि युवा अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखने की आदत विकसित कर ले तो वे जीवन की बड़ी सफलताओं प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: गलती से डरना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि उसे सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करता है तो वही आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल
1: साथ ही हम देखते हैं कि असफलता भी एक प्रकार की सीख है। यदि विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाए तो उसे निराश होने के बजाय अपनी तैयारी का विश्लेषण करना चाहिए और अपनी गलत बात को योजना के अनुसार सही करने का प्रयास करना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही है कि यह हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। कोई भी व्यक्ति इतना महान नहीं होता है श्रोता साथियों कि उससे कभी भी गलती ना हो, और कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वह अपनी गलती को सुधार ना सके। फर्क केवल सोच का होता है। कुछ लोग अपनी भूल को किस्मत मानकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग लोग उसी भूल को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेते हैं और सही दिशा में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आज के समय में लोग सफलता, पैसा, प्रसिद्धि तो जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए मेहनत से बचना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि स्वयं की कमियों से होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार, गुस्से, लापरवाही, झूठ या गलत आदतों पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में मनीषा जीवन का विजेता कहलाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सच्ची माफी है वो व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है। यह श्रोता साथियों अहंकार को छोड़कर विनम्रता की प्रेरणा देती है। लेकिन श्रोता साथियों, सच्ची माफी का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। आज हम देखते हैं कि युवा कई बार बिना जानकारी के सोशल मीडिया पर किसी की जानकारी है वो गलत साझा कर देते हैं। बाद में सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा, सब सही हो जाएगा, पर श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बाद में जाकर वो बात ही वो और ज्यादा बिगड़ने लगती है। सामने वाले का विश्वास टूट जाता है और वो हम पर फिर से विश्वास नहीं कर पाता।
0: बिल्कुल मनीषा, आज के समय में लोग सफलता, पैसा, प्रसिद्धि तो जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमें ये भी समझना होगा कि हर गलती केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। हमारे गलत निर्णय का असर परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और समाज तक पहुंच सकता है। इसलिए जब हम अपनी गलती सुधारते हैं तब श्रोता साथियों हमें केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल का भी सुधार करना होता है।
1: जी हाँ।
0: एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्मों से विश्वास पैदा करता है और यही विश्वास किसी भी रिश्ते, परिवार या समाज के सबसे मजबूत नींव होता है। इसलिए अगली बार यदि जीवन में कोई भूल हो जाए श्रोता साथियों, तो केवल मुझे माफ कर दीजिए कहकर आगे न बढ़े, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके बदले व्यवहार को देखकर लोग स्वयं कहें कि हाँ, इस व्यक्ति ने सच में अपनी गलती से सीख ली है। क्योंकि समय के साथ लोग हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे बदले हुए आचरण को याद रखते हैं। इसलिए हमें अपनी गलतियों को केवल कमजोरी नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बनाना होगा। हम हर अनुभव से सीखेंगे, हर ठोकर से संभलेंगे और हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेंगे। और यही प्रयास श्रोता साथियों यकीन मानिए कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा, आत्मसम्मान बढ़ाएगा और हमारे जीवन के सही मायने जो है वो सही तरीके से सार्थक सिद्ध हो पाएंगे। इसलिए याद रखिए कि माफी मांगने से अध्याय समाप्त नहीं होता बल्कि गलती सुधारने से एक नई और बेहतर शुरुआत होती है।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: यही सच्चे इंसान और मजबूत चरित्र की पहचान भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, माफी मांगना आसान है लेकिन गलती सुधारना मुश्किल।
1: बिल्कुल।
0: यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि आत्मचिंतन की आवश्यकता क्यों होती है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हर गलती के बाद सबसे पहले स्वयं से प्रश्न करना चाहिए।
1: जी जी।
0: मैंने ऐसा क्यों किया? क्या यह सही निर्णय था? क्या मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचा? श्रोता साथियों, जब व्यक्ति ईमानदारी से अपने भीतर झांकता है तभी सुधार की शुरुआत होती है।
1: बिल्कुल।
0: आत्मचिंतन हमें दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी कमियों की पहचान सिखाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को एक बात समझाना चाहेंगे। श्रोता साथियों, एक कहानी है और इस कहानी का विषय है एक कील, एक गलती और एक सीख। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती भी था, लेकिन उसे एक बहुत बुरी आदत थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। गुस्से में वह अपने दोस्तों, माता पिता और पड़ोसी से ऐसी बात कह देता जिससे लोगों का दिल दुख जाता। बाद में जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह हर किसी से जाकर कह देता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मनीषा, लोग उसे माफ तो कर देते थे लेकिन धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे।
0: जी हाँ।
1: कोई उससे अपनी बात साझा नहीं करता था। दोस्त उसके साथ समय बिताने लगे थे लेकिन घर का जो माहौल था वो पूरा बदलने लगा था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब उससे दूर क्यों होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: जबकि वह हर बार माफी तो मांग लेता था। फिर मनीषा, एक दिन उसके दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और एक लकड़ी का बड़ा गत्ता रखा, कुछ कीले, एक हथौड़ी दी और उन्होंने कहा कि आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो किसी का दिल दुखाओ उससे पहले इस तख्ते से एक कील ठोक देना। पहले दिन अर्जुन ने 10 कीले ठोक दी। कुछ दिनों बाद तख्ता कीलों से भरने लगा। हर दिन नई कील उसमें उसकी गलती की उसे याद दिलाती। धीरे धीरे ऐसे एहसास हुआ कि वह कितनी बार बिना सोचे समझे लोगों को दुख पहुंचाता रहता है। फिर दादाजी ने उससे कहा कि अब एक नया काम करो, जिस दिन तुम किसी से प्यार से बात करोगे, किसी की मदद करोगे और अपनी गलती दोहराने से बचोगे उस दिन एक कील निकाल देना। अर्जुन ने अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया। अब वह बोलने से पहले सोचता, गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करता और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता।
0: बिल्कुल।
1: आसान नहीं था, कई बार वह फिर गलती कर बैठता लेकिन हार नहीं मानता। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद उसने तख्ते की सारी कीले निकाल दी। वह बहुत खुश होकर दादाजी के पास गया और बोला, देखिए दादाजी, अब इसमें से सारी कीले निकल चुकी है, मैंने अपनी सारी गलतियां सुधार ली। दादाजी मुस्कुराए और उससे बोला कि बेटा, क्या तुमने इन सारी चीजों से कुछ सीखा? अर्जुन ने ध्यान से देखा और उसमें छोटे छोटे छेद बने हुए रह गए थे। दादाजी बोले, कीले तो निकल गई लेकिन उनके निशान रह गए हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो बाद में चाहे कितनी भी बार हम माफी मांग ले, उस पर दर्द का निशान पूरी तरह मिटाना आसान नहीं होता। इसलिए
0: हाँ।
1: सबसे बड़ी समझदारी गलती के बाद सिर्फ सॉरी कहना नहीं बल्कि अपने स्वभाव में बदलाव लाना होता है।
0: जी
1: जब
0: हाँ।
1: लोग तुम्हारे बदलाव को देखेंगे, समझेंगे, तुम पर धीरे धीरे विश्वास करना शुरू करेंगे तभी तुम्हारे जीवन में तुम सुखी रह पाओगे। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नियम बना लिया कि बोलने से पहले वो सोचता, गुस्से से पहले रुक जाता और गलती होने से पहले माफी मांगने की नहीं सोचता बल्कि उसकी सुधार की शुरुआत करता। कुछ महीनों बाद वही लोग उससे दूर हो गए, फिर से उसके करीब आने लगे जो पहले दूर हो गए थे। अब लोग कहते हैं कि अर्जुन बदल गया है। अब उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से उसकी सच्चाई दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों, माफी मांगना विनम्रता की शुरुआत नहीं है लेकिन गलती सुधारना अच्छे चरित्र की पहचान है। शब्द कुछ पल के लिए सुकून दे सकते हैं पर बदला हुआ व्यवहार जीवन भर विश्वास लौटाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें जितने जल्दी सुधार लिया जाए उतना अच्छा होता है। देर होने पर परिस्थितियां बदल जाती है साथियों और नुकसान भी बढ़ जाता है। इसलिए गलती का एहसास होते ही सुधारने के प्रयास में अपने कदम बढ़ाना शुरू करें। सही समय पर लिया गया निर्णय कई कठिन समस्याओं को रोक सकता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति केवल लोगों की आलोचनाओं से बचने के लिए सुधार करवाना सुधार का दिखावा देना दिखाना चाहता है तो वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। लेकिन जब सुधार भीतर से आता है तो उसके व्यवहार, बोलचाल, कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यदि परिवर्तन श्रोता साथियों लोगों के मन में विश्वास को बढ़ाता है, जिससे हम देखते हैं कि हमारी गलतियां हैं वो कम होने लगती हैं, हमारा आत्मविश्वास है वो बढ़ने लगता है और हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आज का जो हमारा विषय है वो हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है कि इंसान की असली महानता इस बात में नहीं कि वह कभी गलती न करे, बल्कि इस बात में है कि वह अपनी भूल को स्वीकार करके उसे अपने व्यक्तित्व के विकास का माध्यम बना सके। जीवन की हर गलती हमें दो रास्ते देती है, एक उससे बचने के लिए बहाना बनाना और दूसरा उससे सीखकर स्वयं में कुछ बेहतर बदलाव करना। समझदार व्यक्ति हमेशा दूसरा रास्ता ही चुनता है। आज के समय में लोग शब्दों का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लेते हैं, रिश्तों में दरार आए तो माफी मांग लेते हैं, काम बिगड़ जाए तो अफसोस जता लेते हैं, किसी का विश्वास टूट जाए तो एक संदेश भेज देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि विश्वास, सम्मान और अपनापन केवल शब्दों से नहीं लूटते, इसके लिए समय देना पड़ता है, धीरे रखना पड़ता है और अपने व्यवहार से साबित करना पड़ता है कि हमने वास्तव में अपनी गलती से सीख ली है। हमें ये भी याद रखना होगा श्रोता साथियों कि हर गलती एक जिम्मेदारी लेकर आती है। यदि हम अपनी भूल का असर समझते हैं, उससे हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करते हैं और भविष्य में वही गलती दोबारा न हो उसके लिए स्वयं पर काम करते हैं, तभी हमारा पश्चाताप सच्चा कहलाता है। यही सोच एक अच्छे परिवार, मजबूत समाज और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में निर्णय लेने भी तेजी से हो जाते हैं, इसीलिए श्रोता साथियों हर कदम सोच समझकर उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि कभी गलती हो जाए तो उसे पीछे छुपाने के बजाय उसे सीखे और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही आदत आपको जीवन में आगे ले जाएगी। साथ ही श्रोता साथियों, जब समाज में लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां लेने लगते हैं तब विश्वास बढ़ता है, विवाद कम होते हैं और सहयोग की भावना है वो मजबूत होती है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज, हर जगह श्रोता साथियों यही सिद्धांत लागू होता है कि गलती स्वीकार करना साहस है और उसे सुधारने का प्रयास करना हमारे चरित्र की एक नई पहचान।
1: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यहीं आपको कहना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को भी यही सीख दें कि गलती छिपाने से व्यक्ति छोटा बनता है, लेकिन गलती स्वीकार करने से और उसे सुधारने का साहस करने से व्यक्ति बड़ा बनता है। घर हो, विद्यालय हो, समाज हो या कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ पर हमें इस संस्कृति को विकसित करना होगा जहाँ लोग एक दूसरे को दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो देश की तस्वीर बदलने लगती है। श्रोता साथियों, आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने परिवार में केवल मुझे माफ कर दीजिए कहने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने हर गलत कदम को सही दिशा में बदलने का प्रयास करेंगे।

0: हम अपने व्यवहार में ईमानदारी, अपने शब्दों में संवेदनशीलता और अपने कर्मों में जिम्मेदारी लाएंगे। यही जीवन का सच्चा विकास है और यही अच्छे चरित्र की पहचान है और यही वह विरासत है जिसे हमें संभाल कर रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार लोग अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय छिपाने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि सच सामने नहीं आएगा, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आ ही जाती है। श्रोता साथियों, जब गलती छिपाई जाती है तो उसके साथ झूठ है वो भी जुड़ जाता है और स्थिति अधिक से अधिक होने लगती है। इसलिए श्रोता साथियों, गलती स्वीकार करना हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। हम देखते हैं कि जीवन की बड़ी परेशानियां अक्सर अंजलि जी छोटी छोटी लापरवाहियों से शुरू होती हैं। समय पर काम न करना, किसी की बात पर ध्यान से न सुनना, नियमों की अनदेखी करना या बिना सोचे समझे निर्णय लेकर आगे बढ़ना, ये सभी ही वो हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, छोटी भूलों को गंभीरता से लेना सीखें। यदि हम हर गलती के बाद यह सोचे कि हमने क्या सीखा, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हमारा आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और हमें उससे अनुभव मिलेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि माफी इंसानियत का पहला कदम है, लेकिन सुधार इसके व्यक्तित्व की सबसे ऊंची मंजिल है। जब हमारे कर्म बदलते हैं श्रोता साथियों, तभी हमारी कहानी बदलती है और तभी जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहाँ हर दिन कोई ना कोई नया अनुभव हमें कुछ सिखा कर जाता है। कभी सफलता हमें विनम्र बनाती है तो कभी असफलता हमें मजबूत बनाती है। उसी तरह हमारी गलतियां भी हमें यह अवसर देती हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी कमियों को पहचानें, स्वयं को पहले से बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। यदि हम हर भूल को केवल एक घटना मानकर भूल जाएंगे मनीषा, तो शायद हम वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे। लेकिन यदि हम उसे सीख में बदलेंगे तो वह हमारी गलती जो है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज विश्वास है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, समय निकल जाए तो उससे सीख ली जा सकती है, लेकिन यदि किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जीतने के लिए धैर्य, ईमानदारी और निरंतर अच्छे व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में ही है कि हम अपने शब्दों कर्मों के प्रति सजग रहें और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने रिश्तों में, अपने व्यक्तित्व में उसे संजो कर बनाए रखे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के बदलने का प्रमाण उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके कार्यों में दिखाई देता है। यदि कोई समय के महत्व को नहीं समझता है श्रोता साथियों, और अब समय का पालन नहीं करता है, तो वो हम देखते हैं कि आगे चलकर पीछे रह जाता है और जो उसके साथ के लोग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। श्रोता साथियों, गलती सुधारने के बाद कई बार हम सोचते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिलती है। विश्वास दोबारा जीतने में श्रोता साथियों समय लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लगातार सही व्यवहार, अच्छे कर्म ही लोगों पर भरोसा है वो हमें वापस दिला सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज के कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा, उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को
1: नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। साथियों, स्वागत है आप सभी का फरमाइशों के और गीतों के संगीत पसंदीदा आपके कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से SMS करके। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, और फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर साथियों फिर से बताना चाहूंगी, क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप अपने राय सुझाव और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम के माध्यम से खूबसूरत फरमाइश गीत को सुनने का, तो आइए बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश का गीत है बेताब फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। इस खूबसूरत गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं पंडरपुर से, जाखिल मुलाणी, सुबेया सलमा, मुमताज, दिलसाद नसीर भी, बानो भी, बादशाह मुलाणी और पूरा मुलाणी परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच इसी गीत के साथ और भी दोस्त मनोरंजन करना चाहते हैं, पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। और भी इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है श्रोता साथी पतरिया भरेवा से, चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी नोमे स्नेहा, वान्या सिंगरोल। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, नाम बताना चाहूंगी, जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष चंद्र, एकनाथ, संगीता जाधव, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा प्रसाद, सोनल जाधव, विविसिया जाधव। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के पसंदीदा गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, ये गीत हमें याद दिलाता है साथियों कि बीते पल लौट कर नहीं आते। इसलिए हर रिश्ते और हर खूबसूरत लम्हे को हमें पूरे दिल से जीना चाहिए साथियों। जवानी की यादें, दोस्तों का साथ और अपनों का प्यार, यही श्रोता साथियों जीवन की सबसे अनमोल पूंजियाँ हैं और ये पूंजियों को हमें संभाल कर रखना चाहिए। उम्मीद है साथियों इस गीत ने आपको आपकी खूबसूरत यादों को फिर से ताज़ा कर दिया होगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। आपको बताना चाहूँगी, फिल्म का नाम है खलनायक, गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चली रे। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से आसिफ अली खान, मोमिनाना, सादिक अली खान, सादिक अली खान।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत ही प्यारे से फरमाइशों के गीत हम कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, तो फिर से बढ़ना चाहूँगी साथियों अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है मजनू का टिल्ला से आया है, फिल्म का नाम है साथियों कुछ कुछ होता है। गीत के बोल हैं, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमम मलिक, आकांक्षा मलिक और भी हमारे दोस्त इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूँगी श्रोता साथियों, जुड़ रहे हैं नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितेश शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी और भी श्रोता साथी गंजुटवारा से हैं, शमशल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी इसे बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को, नाम बताना चाहूँगी साथियों हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर, अमरजीत कौर। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत आया है हरगोविंद नगर नवा शहर से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूँगी सुदागर। गीत के बोल हैं इलू इलू। इस गीत को आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे नवा शहर से सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश, शिक्षा, प्रतीक्षा साधु जी, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा जी। महाराष्ट्र से और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अर्णय, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जी। और भी साथी हैं जो मनोरंजन इसी गीत के साथ करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं भवानी नगर पेठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवर्धन, अशोक धोंगड़े, राशि, कार्तिक और परी धोंगड़े। गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं शिषपाल वर्धमान जी और शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। बोड़खेड़ा पित्रामल से हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मुणत, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मुणत जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं इलो इलो। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश का गीत तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया है। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। गीत के बोल है ये आखा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। साथियों बहुत ही फरमाइश का प्यारा सा गीत है ये। इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। जुड़ना चाह रहे खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम, अक्षय सेन। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवेम जैन, आदि जैन, अंश जैन, पव्य जैन, अंशिका जैन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पा, नवनीत भाटिया। पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। श्रोता साथियों पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन जी। इसी बीच गंजू द्वारा से साथी जुड़ रहे शमशुल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, ओजे डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं खुपटे से है नेवासा से बंडू लोहार पोपलगढ़, माया शिवांश, चंद्रकला और देवीदास पोपलगढ़ जी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे नाशी शेख, नाजर नाशी, साजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। जरूर वरूर से हैं बाबा साहेब बड़ोदी, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, नरगिस खातून जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी साथियों। जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और भी हमारे दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूँगी खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडोगोल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का जी। सिंधी बुजुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये अखा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है।

श्रोता साथियों, इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत अभी हमने सुना साथियों, इसी गीत के बाद अगली फरमाइश का गीत है, प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। फिल्म का नाम है बेवफा। गीत के बोल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में हरिद्वार से, ताजमोद अंसारी, गुलाम शाबिराही, महराज जहां, कुमार हेड़ा, सहारनपुर से भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। सैयद मसूर, साइना असा अक्सा और नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीप जी और भी श्रोता साथी पाटापरा छत्तीसगढ़ से हैं, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, लोखीलाल वर्मा जी, अजित कसाना, मयार देवी, ऋतिक आदित्य कसाना लदावली से जुड़ रहे हैं, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय किरोड़कर, जाखोद राजस्थान से जुड़ना चाह रहे शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खड्डे, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूर्जा खटक। बुलंदशहर से श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। साथियों बताना चाहूंगी, मोहम्मद सिद्धबासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन सुहान जी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण, जफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख जी, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल, अमरावती महाराष्ट्र से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ, अर्चनाताई गुणाने जी, हीरामन शिंदे, प्रेम प्रसिद्धि प्रतिभा जी, छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे राजेंद्र गांव छत्तीसगढ़ से भी बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इस सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बक्सर बिहार से। फिल्म का नाम है दिल, गीत की बोल हैं हम प्यार करने वाले। इस गीत की फरमाइश करते हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सूत रमेश शाहू जी, डुमराव बिहार से जुन्नाचारी, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी और अलीबा जी। इसी बीच जुन्नाचारे पुणे जी, पंकज वाड़ो दी, आर्या वाड़ो दी, बीटी वाड़ो दी जी, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है मुगलपुरा भागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रही है हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश जी कड़वासरा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं हम प्यार करने वाले। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोहका बलाई सी। फिल्म का नाम है पारशमणि, गीत के बोल हैं ओ जब याद आए। इस गीत की फरमाइश करता है उत्तम सिंह जंगिल, मोरस जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजीत कुमार जंगिल, आरुषि जंगिल, आयुष जंगिल, नंदिनी जंगिल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगिल, सुकुन जंगिल, आयुषी जंगिल, ओशिका आदित्य और अंजलि जी जंगिल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायराजी सुरोशी। इस गीत के अनुरोध करता है दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़ी, रेखा बंसोड़ी, अदिति बंसोड़ी, विभव सिंधे जी। खंडाला से जुड़ रहे हैं आकाश सरोदी, प्रिया सरोदी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे नरवेल महाराष्ट्र से पीएच नेहावकर, निर्मला नेहावकर, विशाल नेहावकर। मलकापुर से जुड़ रहे नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही वो याद आए। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोलते हैं वो जब याद आएँ बहुत याद आएँ। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडुडवारा से। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं ओडनी। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़हीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, दुर्गा कॉलोनी हांसी सी, राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बरेली सी, मोहम्मद याशिर अंसारी, शमशील अंसारी, नरसी अंसारी, शमा अंसारी, महिनूर जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है पथरोड सी, विजय अंबाटेकर, सुनीता अंबाटेकर, अक्षय अंबाटेकर, राधिका अंबाटेकर, ऋषिकेश जी अंबाटेकर। इसे भी जुड़ना चाह रहे धनोरी तेली वाला सी, निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत की अनुरोध करता है भेड़ शहर महाराष्ट्र सी, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू, पीपी कुतलेश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को, गीत के बोल हैं ओडनी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद में बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बुलढाणा महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है लोफर, गीत के बोल हैं आज मौसम बड़ा बहिमान है। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है भगवान पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी पाटिल, समर्थन दादा पाटिल, कुमारी सानिका जी पाटिल, नादुरा से जुड़ना चाह रहे हैं शिवांगी उगले और राहुल जी उगले। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण शाहू, राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से साहजी बोर्ड की श्रीमती नंदा, हनुमान जी और उत्तम जी जगधाड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली सी शाहिद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मगनपुर झारखंड सी अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, निशा जी। कलानौर से जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला भेंडी, विजय शुभम, पवन जरी और सजीव जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल ही आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है फ़र्ज़। गीत के बोल ही हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। इस गीत की फरमाइश करते हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, श्री राम पोसी, गियो शिव कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावले से जुड़ रहे हैं अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, शायशा सोनू ने जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बाबा कुटरे रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नई बस्ती गंजुडवारा से, यासिन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ जी, तोनूर जी, कलीम अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इशराद, अजरा तबोसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर मस्जिद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। इस गीत के अनुरोध करता है अंबाला सी रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, मन्नत, गुरशब्द, गिरगिरत राहुल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोले हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला महू से। फिल्म का नाम है हमराज, गीत के बोल हैं तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं डापकी रोड अकोला से, शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से हीरामणि शेंडी, शीला देवी शेंडी और सिद्धार्थ जी गोड़ानी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आवारपुर से। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल हैं पायलिया हो पायलिया। इस गीत की फरमाइश करता है शेख हबीब छोटूभाई शेख, साजन बेगम, फैज़ा शेख, फारूक शेख, अफसाना शेख, अस्मीरा जी, इरफान जी, जन्नत जी, फैजा जी शेख, अब्दुल लोहेवाला और शाहिदा जी शेख। और भी श्रोता साथी जुन्नाचारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोम, मानस जी राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीरा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजयोगिता श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सी उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, सृष्टि बन्ने, शौर्या, दिनेश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं यूपी सी सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोध चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी जी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रिहान खान, बेबी वेदई जोशी, हंसिका जी जोशी, पायल जोशी, अंकित जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत के बोल हैं, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने और लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, अभिर और वीर चौरासिया। कानपुर से जुड़ रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दिया जी चौरासिया। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे

कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद हम सुन सकेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोताओं, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।

0: आत्मा जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
1: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ गंभीर सोच और चिंतन भी जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है, डिग्रियां बढ़ रही है, कोर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लाखों युवा नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कशिश,
0: बिल्कुल
1: सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या केवल पढ़ाई काफी है? क्या केवल अच्छे अंक नौकरी दिला सकते हैं? या क्या केवल अंग्रेजी बोल लेना ही सफलता की गारंटी है?
0: जी हाँ,
1: जवाब है नहीं। श्रोता साथियों, आज कंपनियां ऐसे युवाओं की तलाश कर रही है जो सिर्फ बोलना ही नहीं जानते बल्कि सोच भी सकते हैं, जो केवल जानकारी ना रखते हो बल्कि जानकारी का सही उपयोग करना भी जानते हो।
0: जी हाँ,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे इस विषय के बारे में, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ साथ गंभीर सोचना और चिंतन भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि आज के समय में नौकरी प्राप्त करना केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रह गया है। पहले कंपनियां केवल शैक्षणिक योग्यता को महत्व दिया करती थी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन जैसा कि अब समय बदल चुका है, अब कार्यस्थल की बदलती आवश्यकताओं के कारण युवाओं में कई प्रकार की कौशल की मांग भी बढ़ गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संचार कौशल जो होता है वो उसकी तलाश की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक जो सोच होती है उसको भी महत्वपूर्ण माना जाता है और चिंतन करना भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं युवा साथियों कि ये जो आज का विषय है हमारा कि नौकरी के लिए हमें कम्युनिकेशन के साथ साथ कुछ संचार कौशल भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में जागृति जी किसी युवा के पास अच्छी शिक्षा होती है लेकिन विचारों का स्पष्ट रूप नहीं होता है तो अवसर होने के कारण भी वे पीछे रह जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, अगर हम संचार कौशल की बात कर रहे हैं तो श्रोता साथियों, किसी भी नौकरी में सबसे पहले हमारी पहचान हमारे संवाद से होती है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे हम अपनी बात को रखते हैं, कैसे दूसरों को सुनते हैं, ये सारी बातें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: इंटरव्यू में अक्सर उम्मीदवार का ज्ञान बाद में और उसका व्यवहार पहले देखा जाता है। कशिश, यदि हमारे पास अच्छी योग्यता है लेकिन हम उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते तो हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है। श्रोता साथियों, कम्युनिकेशन केवल बोलना नहीं होता बल्कि सुनना, समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही अगर नौकरी में कम्युनिकेशन के महत्व को हम जाने तो देखते हैं कि आज लगभग हर क्षेत्र में कर्मचारियों को ग्राहकों, सहकर्मियों और अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में श्रोता साथियों हमारा मन कई बार निराशा की गहराई में चला जाता है क्योंकि हम उनसे ठीक ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब हमारा मन उत्साहित होता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हमें लगने लगते हैं, लेकिन वहीं जब हमारा मन उदास होता है तो छोटी सी चुनौती भी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए युवा साथियों केवल शरीर को मजबूत बनाना पर्याप्त नहीं होता बल्कि इसमें मन को भी मजबूत बनाना जरूरी है।
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि केवल बोलना काफी नहीं है, सोचने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: मान लीजिए श्रोता साथियों की किसी कंपनी में अचानक कोई समस्या आ जाती है, मशीन बंद हो जाती है, ग्राहक शिकायत कर देते हैं या कोई नई चुनौतियां हमारे सामने आ जाती है।
0: जी जी,
1: ऐसे समय में कंपनी को केवल बोलने वाले लोग नहीं चाहिए होते कशिश, बल्कि ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो समस्या का समाधान कर सके।
0: बिल्कुल,
1: यहीं पर काम आती है क्रिटिकल सोच यानी कि आलोचनात्मक सोच। श्रोता साथियों, क्रिटिकल सोच का मतलब है किसी भी परिस्थिति को समझना, तथ्यों का विश्लेषण करना और सही निर्णय लेना।
0: जी,
1: ये बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार करने की बजाय उसके पीछे के कारणों को समझने की क्षमता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, और हम देखते हैं कि जब नौकरी में कम्युनिकेशन होता है तो इसके ढेर सारे लाभ होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं।

0: ग्राहकों का विश्वास जीतना हमारे लिए आसान हो जाता है युवा साथियों, और इससे हमारे नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है।
1: जी हाँ,
0: कई बार तो जागृति जी ऐसा भी देखा जाता है कि समान योग्यता वाले दो उम्मीदवारों में से वही चयनित होता है जिसकी संवाद क्षमता बेहतर होती है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं युवा साथियों कि कार्यस्थल पर प्रतिदिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर समस्या का समाधान किताबों में हमें नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पर जोर देना चाहिए।
1: जी
0: जैसे
1: हाँ।
0: कि समस्याओं का तेज समाधान निकालना, समस्या आने पर बेहतर निर्णय क्षमता का होना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। क्योंकि जागृति जी, जो कर्मचारी केवल निर्देशों का पालन करते हैं उसकी तुलना में समस्या का समाधान खोजने वाला कर्मचारी अधिक मूल्यवान माना जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं, हम बात कर रहे हैं नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ साथ गंभीर सोच और चिंतन भी क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि नौकरी के लिए कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारे लिए गंभीर सोच और चिंतन कितना जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि श्रोता साथियों अगर गंभीर सोच के बारे में बताए, चिंतन के बारे में बताए, तो गंभीर सोच के साथ साथ चिंतन भी बहुत जरूरी है। चिंतन का अर्थ है अपने अनुभव से सीखना, दिन भर के कार्यों पर विचार करना, अपनी गलतियों को पहचानना और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना।
1: जी हाँ,
0: जो युवा चिंतन करते हैं कशिश में लगातार विकसित होते रहते हैं। वे अपनी असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे गहरा चिंतन ही छिपा होता है श्रोता साथियों, और कहा गया है कि जो स्वयं पर विचार करता है वही स्वयं को निखारता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों हम चिंतन के महत्व को जान पाए। अब यही अगर बात करें कि हमारे युवा साथी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो श्रोता साथियों सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है कि आपको सुनना सीखना है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ दोस्तों पढ़ने की आदत भी आप विकसित करें, जैसे कि समाचार पत्र आप पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें और सामान्य ज्ञान को बढ़ाएं। इससे जागृति जी हमारी सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हम हर बात को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल कशिश। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सोच और चिंतन के बारे में, तो श्रोता साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज अधिकांश कंपनियां केवल डिग्री नहीं देखती, वो ये देखती है कि उम्मीदवार टीम में कैसे काम करता है, समस्याओं को कैसे हल करता है, नए विचार कैसे देता है, अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करता है और सीखने की इच्छा कितनी रखता है।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि श्रोता साथियों कम्युनिकेशन और क्रिटिकल सोच दोनों मिलकर एक सफल कर्मचारी बनाते हैं। यदि किसी के पास केवल ज्ञान है कशिश लेकिन वो संवाद नहीं कर पा रहा है तो उसकी क्षमता सीमित हो जाएगी।
1: जी हाँ।
0: और यदि कोई केवल बोल सकता है लेकिन सोच नहीं सकता तो उसका प्रभाव लंबे समय तक भी नहीं टिक पाएगा। इसीलिए श्रोता साथियों कहा गया है कि सफलता वही जन्म लेती है जहाँ संवाद और विचार साथ में चलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छी बात यह है कि कौशल जन्म से नहीं आते, इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया था कि पढ़ने की आदत, प्रश्न पूछना, चर्चा में भाग लेना, अपनी बात को लिखना, आत्मचिंतन करना और गलतियों से सीखना। तो श्रोता साथियों हम आप इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि नौकरी केवल पद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी निभाने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि समझ, विवेक और संवाद की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: आज हम देख रहे हैं कशिश कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई तकनीकें और बदलते कार्यस्थल नई चुनौतियां ला रहे हैं। ऐसे समय में अगर युवा आगे बढ़ेंगे जो सीखने के लिए तैयार होंगे, सोचने की आदत रखेंगे और प्रभावी संवाद करेंगे, अपने भीतर प्रश्न की आदत विकसित करेंगे, नई चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने विचारों को निखारेंगे, तो वो हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं यदि आप अपने करियर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो केवल परीक्षा पास करने पर ध्यान न दें बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी विकसित करें।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि अच्छा बोलना आप सीखिए, ध्यान से सुनना सीखिए और तर्क के साथ सोचना सीखिए।
0: बिल्कुल।
1: हर दिन श्रोता साथियों आत्मचिंतन की आदत विकसित कीजिए, क्योंकि ये गुण आपको केवल नौकरी दिलाने में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करेगा।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं जागृति जी कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में नौकरी प्राप्त करने और उसमें सफल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ चिंतन के संतुलित विकास का होना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में कम्युनिकेशन व्यक्ति को अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना सिखाता है, और जो गंभीर सोच होती है वो सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है।
0: बिल्कुल।
1: और चिंतन साथियों व्यक्ति को निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ाता रहता है। ऐसे में जो युवा इन तीनों गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वे न केवल बेहतर कर्मचारी बनते हैं बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि नौकरी पाने के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है श्रोताओं, अच्छा कम्युनिकेशन हमें लोगों से जोड़ता है, गंभीर सोच हमें समस्याओं का समाधान करता बनाती है और चिंतन हमें लगातार बेहतर इंसान बनाती है। जब ये तीनों गुण एक साथ मिल जाते कशिश, तब सफलता केवल सपना नहीं रहती बल्कि वास्तविकता बन जाती है।
1: जी
0: तो श्रोताओं अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाइए, अपनी सोच को गहरा बनाइए और अपने चिंतन को जीवन की दिशा बनाइए, क्योंकि नौकरी केवल हाथों के कौशल से नहीं बल्कि विचारों की ताकत से भी मिलते हैं।
1: जी
0: कहा
1: हाँ।
0: गया है कि अच्छा संवाद पहचान दिलाता है, गहरी सोच सम्मान दिलाता है और सतत चिंतन सफलता की नई उड़ान दिलाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि हमारे युवा साथियों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवा दें।
0: जी हाँ। तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी बातें रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है।
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ू जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
0: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो

0: असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी आपसे ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए श्रोता साथियों पहले मनोरंजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी किस विषय पर बातचीत रहने वाली है। तो साथियों आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातें ढेर सारी होंगी। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि आज का हमारा ये कार्यक्रम जो है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं आलस और मेहनत की बहस को लेकर। साथियों, एक छोटे से नाटक के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में मेहनत का एक अलग ही महत्व होता है। साथियों, बताना चाहूंगी कि ये नाटक तीन सहेलियों का है, रिया, सिया और नंदिनी। दोस्तों, तीनों ही एक स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग अलग हैं। सिया बहुत ही मेहनती और अनुशासित लड़की है। वह समय पर उठती है, पढ़ाई करती है और अपने हर काम को समय पर पूरा करती है। वहीं रिया इसके बिल्कुल विपरीत है। वह अक्सर काम टालती रहती है, देर तक सोती है और हर काम के लिए ना कहती है। तीसरी सहेली नंदिनी जो है वो समझदार और शांत स्वभाव की है। वह दोनों की बात ध्यान से सुनती है और सही गलत को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। साथियों, एक दिन सुबह पार्क में इन तीनों के बीच आलस और मेहनत को लेकर एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। रिया कहती है कि आराम करना सबसे अच्छा है, जबकि सिया समझाती है कि मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। इसी बहस के दौरान दोस्तों कई उदाहरण और अनुभव सामने आते हैं जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में सही रास्ता कौन सा है। तो आइए साथियों, इस नाटक के माध्यम से हम समझते हैं। सुबह का समय है, पार्क में हल्की हल्की हवा चल रही है, पेड़ों के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसी पार्क के एक कोने में बेंच पर बैठी रिया बैठी है और जम्हाई ले रही है।
1: उफ, कितना थकाने वाला दिन है। अभी तो सुबह ही हुई है और मुझे पहले से ही आराम करने का मन कर रहा है।
0: अरे रिया, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो दौड़ लगाते हैं।
1: नहीं सिया, मेरा मन नहीं है, मुझे बस आराम करना है।
0: तुम हमेशा यही कहती हो, अभी नहीं, बाद में करेंगे।
1: तो क्या हुआ, काम बाद में भी तो किया जा सकता है ना?
0: लेकिन हर काम का एक सही समय होता है रिया।
2: अरे तुम दोनों यहाँ क्या चर्चा कर रही हो?
0: रिया फिर से आलस कर रही है।
1: अरे मैं आलस नहीं कर रही, बस थोड़ा सा आराम कर रही हूँ।
2: आराम और आलस में फर्क होता है।
1: तुम भी सिया की तरह ही बोलने लगी नंदिनी।
2: हाँ, क्योंकि सिया सही कह रही है।
1: तुम लोग हमेशा मेहनत की बात करती रहती हो, क्या जिंदगी में आराम करना गलत है क्या?

0: नहीं रिया, आराम करना गलत नहीं है,
1: लेकिन जरूरत से ज्यादा आराम करना आलस बन जाता है।
2: मुझे तो आलस अच्छा लगता है।
0: अरे रिया, शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही परेशानी का कारण बन जाता है। रिया, क्या तुमने आज का होमवर्क किया?
2: नहीं, मैं सोच रही हूँ कि शाम को कर लूँगी।
1: और अगर शाम को भी मन नहीं हुआ तो?
2: फिर कल कर लूँगी।
0: और अगर कल भी मन नहीं हुआ तो?
2: फिर मुश्किल हो जाएगी।
1: मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो सहेलियाँ रहती थी। एक बहुत मेहनती थी, वह रोज समय पर पढ़ाई करती थी, घर का काम करती थी और खेलती भी थी। दूसरी सहेली हमेशा काम टालती रहती थी। समय बीतता गया और परीक्षा का समय आया। मेहनती लड़की ने अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे पढ़ने चली गई। लेकिन आलसी लड़की को बहुत पछताना पड़ा।
2: यह कहानी तो ठीक है नंदिनी, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता।
1: ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है।
0: रिया, तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है?
2: पैसा।
1: नहीं,
0: सबसे कीमती चीज है समय।
2: समय क्यों?
1: क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं।
0: तुमने किसान को खेत में काम करते देखा है?
2: हाँ, देखा है ना।
0: अगर किसान आलस करे तो क्या होगा रिया?
2: फसल खराब हो जाएगी।
1: ठीक वैसे ही विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा तो उसका भविष्य कमजोर हो जाएगा।
2: क्या सच में मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है?
0: हाँ,
1: सिया और रिया, दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने मेहनत से ही सफलता पाई है।
0: बिल्कुल, जब हम मेहनत करते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
2: कैसे?
1: रिया, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने काम को खुद कर सकते हैं।
2: मुझे लग रहा है कि मैं सच में बहुत आलसी बन गई हूँ।
0: अच्छा, कोई बात नहीं।
1: रिया, अगर हम चाहें तो अपनी आदत बदल सकते हैं।
2: वो कैसे?
0: रिया, छोटे छोटे कदमों से। हमें करना क्या होगा कि हमें समय पर उठना होगा, रोज थोड़ा पढ़ना होगा, खेलना तो जरूरी है तो हम खेलेंगे भी, और काम को हमें बिल्कुल टालना नहीं है।
2: ठीक है, आज से मैं कोशिश करूंगी कि काम समय पर करूं।
0: हाँ, यही सबसे बड़ा कदम है।
1: और अगर फिर से आलस आए तो खुद को याद दिलाना।
2: क्या?
3: मेहनत ही सफलता की कुंजी है।
2: आज मुझे समझ आ गया कि आलस हमें पीछे ले जाता है
0: और मेहनत हमें आगे बढ़ाती है।
1: रिया, अगर बच्चे छोटी उम्र से ही मेहनत और अनुशासन की आदत को अपनाएं, तो उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है।
3: आओ हम सब मिलकर मेहनत को अपनाएं और आलस को दूर भगाएं।
0: तो श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा नाटक सुना, जिससे श्रोता साथियों इस लंबी बातचीत और उदाहरणों को सुनने के बाद हम ये समझ पाए हैं कि रिया को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे ये समझ में आ गया कि बार बार काम टालना और आलस करना भविष्य के लिए नुकसानदायक है। सिया और नंदनी दोस्तों उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा रही थी कि मेहनत करना कठिन जरूर लगता है, लेकिन यही आदत जीवन में सफलता दिलाती है। वे बताती हैं कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। और वही रिया अपनी गलती स्वीकार भी करती है और ये तय करती है कि अब वो आलस छोड़कर मेहनत और अनुशासन को अपनाएगी। तो साथियों, अंत में होता ये है कि इन तीनों सहेलियों का ये कहना है कि अगर बच्चे छोटी उम्र से ही मेहनत, समय की कद्र और अनुशासन की आदत डाल ले, तो उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है। और यही हमारे आज के नाटक का मुख्य संदेश है कि दोस्तों, आलस हमें पीछे ले जाता है, लेकिन मेहनत हमें सफलता और आत्मविश्वास की ओर आगे बढ़ाती है। तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हुई, और अब मैं जैसा कि देख रही हूँ कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।
1: चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

0: आणि माटीने जमीन आणि माटी टकीस जाणी जाऊन हूं मैं खेत हंबार्या बीज बोया मैं पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार किन नती सूरी जन्म टकीस हकदार है कानून ने आ बात मानी है ना पन्ने पूटे तेरा हक कोई ले सके ना रिवाज अना सच में बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा था की दोस्ती करवी है
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भूमि आवंटन हो दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया हर बोना ने मले सही जानकारी सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार याद रखो जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावार हंगरे किसान भाई बहनों ने आपनी पोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सब नु स्वागत कर रहा हमारे आसनी कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के भाई बहन आप सब ने खबर हसे कि कार्यक्रम खेतीबाड़ी में नवा नवा विषय में आते हमें रोज से बातें कर रहा ने आ विषय एवा है जिम की आपने खेती में काम आवे है। ताजे भी एक नव विषय जुड़ाई रू है। आज नो विषय है आ वरसात ना दाड़ा साली रहे हैं तो आना में

0: કિસાન ભાઈ બોન ગીત તો આવીશું પૂરું, અને ગીતને બાદ એક વખત ફેરી આપ સૌનું સ્વાગત છે આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. ને જેમ કે ગીત થકી પહેલા આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજના કાર્યક્રમ ને માધ્યમ થકી આપ થકી વાતે રહેકા કે બરસાતને દાડા મેં આપણે પશુધનનું આપણે હરતે ધ્યાન રાખવું હોય, એના સાથે જે હરો ચારો હોય એનું પ્રબંધન આપણને હરતે કરવું હે. તો આના વિશેની જાણકારી આલવા બોલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં મનીષજી સર આવ્યા હે, એ આપણને બતાડેંગા આ હેતી વાતે. તો પહેલા હમરીલાણાની વાતે ને મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલિ જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો પરિવાર કા બહોત બહોત ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ. તો આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં કિસાન ભાઈ બહેનો સે બાતચીત કા વિષય હૈ કે બારિશ કે મોસમ મેં હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો અપને પશુઓ કે હરિચારી કી વ્યવસ્થા કૈસે કરે ઓર સાથ હી કિન વિશેષ બાતો કા ઉન્હે ધ્યાન રખને કી જરૂરત હૈ. તો સબસે પહેલે આપ હમ યહી બતાઈએ કે બારિશ કે મોસમ મેં હરે ચારે કા આખિરકાર ક્યા મહત્વ હૈ.
1: તો કિસાન ભાઈઓ બહેનો, હમ જો ખેતી કરતે હૈ વો પશુપાલન પે આધારિત ખેતી હોતી હૈ.
0: જી જી.
1: ઓર ખેતી ઓર પશુપાલન કા અપના એક અભિન્ન રિશ્તા હૈ. તો યહાં હર પરિવાર કે પાસ ગાય ભેંસ બૈલ બકરી ઓર મુર્ગા મુર્ગી હોતે હૈ. ખેતી કે સાથ સાથ પશુધન પરિવાર કી આર્થિક સુરક્ષા કા ભી એક બહોત બડા સાધન હૈ.
0: જી જી.
1: જહાં હમ બાત કરે યદિ દૂધ કી, ગોબર કી, ખેત કી જુતાઈ કી, હમારે ગોબર ખાદ કી ઓર ઇસી કે સાથ યદિ હમ હમારી આય કી બાત કરે તો કઠિન સમય મેં અતિરિક્ત આય ઇન સબ કા આધાર હમારે પશુધન હી હૈ.
0: બિલકુલ.
1: લેકિન કભી કભી હમ યે ભૂલ જાતે હૈ જૈસે પરિવાર કે લિયે પૌષ્ટિક ભોજન બહોત જરૂરી હૈ વૈસે હી હમારે પશુધન કે લિયે ભી સંતુલિત ઓર પર્યાપ્ત માત્રા મેં ચારા જરૂરી હૈ.
0: જી હા.
1: યદિ બરસાત કે દિનો મેં પશુધન કો સહી ચારા ઓર સહી દેખભાલ નહીં મિલેગી તો ઇસસે ઉનકે ઉત્પાદન પે અસર પડેગા, ઉનકી કાર્યક્ષમતા ઘટ સકતી હૈ ઓર હમારા પશુધન બીમાર હો સકતા હૈ.
0: બિલકુલ.
1: તો વૈસે તો બરસાત કે મોસમ મેં હરે ચારે કી સામાન્ય રૂપ સે કોઈ કમી નહીં હોતી હૈ. તો હમ દેખતે હૈ કે જૂન સે લગા કે સિતંબર તક વાગડ મેં ચારો ઓર હર કહીં હરિયાલી દિખાઈ દેતી હૈ, ચાહે ખેતો કી મેડ હો, જંગલ કે કિનારે હો, ચારાગાહ હો યા ખાલી પડી જમીને હૈ, ઇનમેં તરહ તરહ કી ઘાસ ઉગાતી હૈ. યહી સમય હૈ જબ પશુધન કો ભરપૂર હરા ચારા મિલતા હૈ.
0: જી હા.
1: હરા ચારા પશુધન કો કેવલ પેટ ભરને કે લિયે નહીં બલ્કિ ઉનકે શરીર કો આવશ્યક પોષક તત્વ વિટામિન ઓર ખનિજ ભી દેતા હૈ.
0: જી બિલકુલ.
1: ઇસસે દૂધ ઉત્પાદન બઢતા હૈ, રોગ પ્રતિરોધક ક્ષમતા મજબૂત હોતી હૈ ઓર ઉનકે શરીર કે વિકાસ કે લિયે યે બહોત જરૂરી ભી હોતા હૈ.
0: જી હા.
1: હમારે બુઝુર્ગ કહેતે ભી હૈ કે બરસાત કા ચારા પશુધન કે લિયે સાલ ભર કા સહારા. યે કહાવત આજ ભી ઉતની હી સહી હૈ જિતની ઉસ સમય હુઆ કરતી થી.
0: બિલકુલ સર આપને સહી કહા. તો જૈસા કે આપને હમેં બતાયા કે બરસાત કે મોસમ મેં હરે ચારે કા ક્યા મહત્વ હૈ, યહી વાગડ મેં ઉપલબ્ધ હરે ચારે કે પ્રમુખ સ્ત્રોત કોન કોન સે હૈ ઓર ઉનકા ક્યા મહત્વ હૈ.
1: તો કિસાન ભાઈઓ બહેનો, યદિ હમ બરસાત કે મોસમ કી બાત કરે તો વાગડ મેં હમારે પશુધન કે લિયે કઈ પ્રકાર કા હરા ચારા ઉપલબ્ધ હોતા હૈ. સબસે પહેલે ખેતો કી મેડે ઉપર ઉગને વાલી પ્રાકૃતિક ઘાસ, યે ચારા બહોત હી પોષક હોતા હૈ. લેકિન આપ ઇસે તભી કાટે જબ ઘાસ અચ્છી તરહ બડી હો જાય.
0: બિલકુલ.
1: દૂસરા હમારા હૈ મક્કા, જ્વાર, બાજરા, યે ભી બારિશ કે મોસમ મેં જો હૈ હમારે કિસાન લગાતે હૈ હમારે પશુધન કે લિયે, તો યે બહોત હી અચ્છા હરા ચારા માના જાતા હૈ ઓર ઇસકી એક ખૂબી યે હોતી હૈ કે યે બહોત તેજી સે બઢતા હૈ.
0: જી જી.
1: ઓર દૂસરા હમારે પશુધન કો યે ખાને મેં બહોત પસંદ આતા હૈ. ઇસકે અલાવા હમારે ચારાગાહ, હમારે જંગલ, હમારી ખાલી પડી જમીને ઓર આસપાસ કે જીતને ભી એસે ક્ષેત્ર હૈ જહાં પે ખેતી નહીં હોતી હૈ વો હમારે પશુધન કે લિયે ઇસ હરે ચારે કે પ્રાકૃતિક સ્ત્રોત હૈ.
0: બિલકુલ.
1: તો જંગલ ઓર ચારાગાહ કી યદિ હમ બાત કરે તો વાગડ મેં આજ ભી સામુદાયિક ચારાગાહ ઓર જંગલ એસી જગહ હૈ જહાં પે હમકો अलग अलग तरह की घास, छोटे पौधे ये देखने को मिलते हैं।
0: जी जी।
1: पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ज्यादा छोटे पौधे जहाँ पे उगे हो वहाँ पे हमारे पशुधन को चराई के लिए नहीं ले जाना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि इसमें भविष्य में आने वाले नए पेड़ों की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए चराई को नियंत्रित करें, एक ही जगह पे लगातार पशु को न चराएं, तो हमारे जो जंगल और चारागाह की हरी घास है वो हमेशा जो है मिलती रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि जंगल और चारागाह का क्या महत्व है, यही अब बात आती है कि बरसात में चारा खिलाते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: किसान भाइयों बहनों, बरसात में चारा खिलाते समय सावधानी शायद आपको सुन के अजीब लगता होगा, पर वास्तविकता में ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं बारिश में हमें क्या सावधानी रखना है या क्या करना है, क्योंकि चारा तो चारों ओर मिल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: हमको तो केवल हमारे पशुधन को छोड़ देना है या घास काट के ले आना है और खिला देना है।
0: जी जी।
1: पर बरसात में सबसे बड़ी गलती भी यही होती है कि पशुधन को सुबह सुबह ओस या बारिश से भीगी घास भरपेट खिला दी जाती है।
0: जी जी।
1: पर ऐसा करने से कई बार पशुधन के पेट में गैस बन जाती है, जिसे हम अपनी भाषा में आफरा कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए यदि घास बहुत ज्यादा गीली हो तो उसे थोड़ी देर छाया में रखकर सुखाएं, उसके बाद खिलाएं। दूसरी सावधानी की बात करें तो ये है कि केवल हरा चारा ही न दें। हरे चारे के साथ थोड़ा सा सूखा चारा, भूसा, भूसी, इस तरह की घास या चारा भी जो है जरूर दे। क्योंकि सिर्फ हरा चारा खाने से पशुधन का पाचन खराब हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और यदि सूखा चारा भी उचित मात्रा में उनको दिया जाता है तो उनका पाचन हमेशा अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ में हम देखते हैं कि बरसात में कई तरह के जहरीले पौधे भी उगाते हैं। यदि पशुधन इन्हें खा ले तो कई बार उन्हें उल्टी, दस्त, पेट दर्द या गंभीर बीमारी हो सकती है।
0: जी जी।
1: इसलिए कोशिश करें कि पशुधन को ऐसे स्थान पर चराने से बचें जहां इस तरह के पौधों की मात्रा अधिक हो या इस तरह की घास ज्यादा हो। यदि इसके बावजूद आपको लगता है कि हमारे पशुधन ने खाना बंद कर दिया है या वो बार बार जमीन पर लौटने लगा है, तो ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बरसात में चारा खिलाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, जहरीले पौधों से सावधानी कैसे रखनी है, उसके बारे में यही हमें बताया है। यही अब बात आती है, फफूंदी लगा चारा हमें पशुओं को क्यों नहीं खिलाना चाहिए और साफ पानी की व्यवस्था हमें पशुओं के लिए कैसे करने की जरूरत है।
1: जी, तो किसान भाइयों बहनों, बरसात के दिनों में नमी ज्यादा होती है और कई बार हम घर में जो शाम के समय चारा ला के रख देते हैं कि अगले दिन वो हमारे पशुधन को देंगे, कई बार वो चारा हम ज्यादा भी ले आते हैं, वो फिर से बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप जब चारे के पास जाएं और यदि आपको लगे कि चारे से बदबू आ रही है, उसका रंग बदल गया है, उस पे सफेद या काली फफूंदी दिखाई दे, तो उसे पशुधन को बिल्कुल न खिलाएं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये थोड़ी सी लापरवाही हमारे पशुधन को बीमार कर सकती है और हमारा आर्थिक नुकसान कर सकती है।
0: जी हाँ।
1: अगर हम बात करें पानी की, तो ये समय पानी के मामले में बहुत सावधान रहने का है। क्योंकि बारिश के समय में जो पानी गड्ढों में, तालाबों में, नदी में, नाले में बह के आता है, ये दूषित पानी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियां हमारे पशुधन में फैल सकती हैं। इसके कारण हमेशा उन्हें साफ और ताजा पानी घर पे ही उपलब्ध कराएं, जब वो घर में है या कहीं आप चराने ले जा रहे हैं तो वहां जो भी आसपास हैंडपंप वगैरह हो उस पे उनको पानी पिलाएं। गंदे पानी को पीने से उन्हें बचाएं, जिससे उन्हें कई बीमारियों से बचाया जा सके।
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा। यही अब बात आती है, खनिज मिश्रण और नमक का क्या महत्व है और ये हम हमारे पशुओं को कैसे दे सकते हैं।
1: जी, किसान भाइयों बहनों, खनिज मिश्रण और नमक के महत्व की यदि बात करें तो हम सूखा, गीला, जिस भी तरह का चारा हमारे पशुधन को देते हैं, उस चारे में सभी तरह के पोषक तत्व नहीं मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इनकी पूर्ति के लिए हमें नियमित रूप से हमारे पशुधन को खनिज मिश्रण यानी कि मिनरल मिक्सचर जिसको बोलते हैं वो देना चाहिए, और या तो चारे के ऊपर हल्का सा नमक छिड़क दें, या जो पानी हम पिला रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें। इससे उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, प्रजनन क्षमता अच्छी रहती है और दूध उत्पादन भी बेहतर होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि हमें चारे का संरक्षण करना कैसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई बहन चारे का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे जो पशु हैं उन्हें चारा समय पर और सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: तो किसान भाइयों बहनों, ये तो सही है कि बरसात में चारा खूब मिलता है, लेकिन यदि हम बात करें गर्मियों की तो यहाँ चारा हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए जब चारा ज्यादा हो तो उसका कुछ हिस्सा हम यदि सुखा कर सुरक्षित रखना शुरू करें तो आने वाले समय के लिए यही हरा सूखा हुआ चारा हमारे पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था के रूप में पूरे साल हमें काम आएगा। तो बहुत ही आसान है कि जो ज्यादा चारा इस समय हमको मिल रहा है उसे व्यवस्थित तरीके से सुखा के और उसको इकट्ठा करके उसका भंडारण किया जाए।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को पशुधन से जुड़े हरे चारे की व्यवस्था हम कैसे करें उसके लिए ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो किसान भाइयों बहनों, एक बरसात में हरा चारा आपके पशुधन को खूब खिलाएं, पर केवल हरे चारे पर निर्भर न रहें।
0: बिल्कुल।
1: उन्हें सूखा चारा भी दें, सड़ा गला या फफूंदी लगा चारा कभी न खिलाएं, साफ पानी, नमक और खनिज मिश्रण की व्यवस्था हमेशा रखें। जो हमारे पास अतिरिक्त चारा है उसका संरक्षण करें ताकि आगे आने वाले समय में हमारे पशुधन को वो काम आ सके।
0: बिल्कुल।
1: और यदि पशुधन बीमार दिखाई दे तो ज्यादा समय घरेलू उपचार में न गंवाकर तुरंत पशु चिकित्सक को जो है दिखा देना चाहिए, क्योंकि हमारे पशुधन केवल जानवर नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: वे हमारे परिवार का एक हिस्सा है, वे हमारी खेती की ताकत है और हमारी आजीविका का आधार है।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
1: वागड़ रेडियो और सभी सुनने वाले किसान भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: जिम की किसान भाई बहन, हमने अपने हाथे मनीषजी सर जुड़े हता ने ना थी कि आपने रेडियो साथी अंजलि बहन बात करी रही थी कि आपने पशुधन नो ध्यान अपने हरते राखू है, इन्होंने खावाना पीवाना ध्यान हरते राखू है, आ सब बातें अपने आज ना कार्यक्रम के माध्यम थकी करी है। अबे आप देखी रहो कि टाइम थी गयो है अनास कार्यक्रम थकी सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर जाते पहले हमारे लिए एक और कितने मोरे पड़ा सूटा।

किसान भाई बोन गीत तो आई शु पूरा नणस गीत हाथे पड़ो सूटा। उम्मीद करा कि आज जे भी बातें रही कार्यक्रम खेती बाड़ी माध्यम तक की ये बातें आपने गमी होंगा। आपने हमारो आज नो कार्यक्रम केवो लाग्यो एना बारे में आप राय सुझाव आली सको अमारे अड़ा पता माते। अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाथे तार हुदी राम राम राम राम।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सांभनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रियो है मानी दुआ पिता नी उम्मीद निसोरनी मुस्कान
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो
0: एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रियो है
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गांव के चौपाल से लोकतंत्र की मजबूती को लेकर। अंजलि, लोकतंत्र केवल संसद विधानसभा या चुनावों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत वहां दिखाई देती है जहां आम लोग अपने गांव, समाज और देश के विकास के लिए मिलकर विचार करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे गांव में सदियों से एक ऐसी परंपरा रही है जो लोगों को जोड़ती है, संवाद को बढ़ावा देती है और सामूहिक निर्णय लेने की संस्कृति को मजबूत करती है।
0: जी हाँ।
1: और ये परंपरा है गाँव की चौपाल।
0: जी हाँ।
1: चौपाल केवल बैठने का स्थान नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये विचार विमर्श, जन भागीदारी, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवंत मंच है। जब गांव के लोग चौपाल में बैठकर अपनी समस्या और उनके समाधानों पर चर्चा करते हैं, तब लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती है। आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार गांव की चौपाल लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हमारी अवश्य रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले आपको विषय से अवगत कराया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी चर्चा का विषय रहेगा, गांव की चौपाल लोकतंत्र को मजबूती किस तरह से प्रदान करती है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, हम देखते हैं कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए भारत के लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति भी गांवों में ही बसती है। श्रोता साथियों, लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान करना नहीं होता है, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी, संवाद, पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: इन सभी मूल्यों को मजबूत बनाने में गांव की चौपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
0: बिल्कुल अंजलि, चौपाल केवल एक जगह नहीं है बल्कि विचारों का संगम है, अनुभव का विद्यालय है और सामाजिक चेतना का केंद्र है।
1: बिल्कुल,
0: बरगद या पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर जब गांव के लोग अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं, तब लोकतंत्र का सबसे सुंदर स्वरूप हमें दिखाई देता है।
1: जी जी
0: श्रोताओं, लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए, लेकिन ये तभी संभव है अंजलि जब जनता जागरूक हो, सक्रिय हो और निर्णय प्रक्रिया में भाग ले। चौपाल यही अवसर प्रदान करती है। यहाँ किसी बड़े पद या विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं होती, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और अपनी राय दे सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, चौपाल भारतीय ग्रामीण जीवन की एक ऐसी परंपरा है जहाँ लोग एकत्र होकर सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह केवल बातचीत का स्थान नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि जनमत निर्माण का केंद्र है। यहाँ लोगों को अपनी बात कहने, दूसरों की बात सुनने और सामूहिक निर्णय लेने का अवसर मिलता है, और यही लोकतंत्र की मूल भावना भी है।
0: बिल्कुल,
1: लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता की भागीदारी होती है। जब लोग जागृति जी अपने गाँव की समस्याओं और आवश्यकताओं पर खुलकर चर्चा करते हैं, तब वे विकास प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनते हैं। चौपाल लोगों को यह अवसर प्रदान करती है। यहाँ किसान, मजदूर, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इससे लोगों में यह विश्वास बढ़ता है कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है और उनके सुझावों का भी मूल्य है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि गांव के चौपाल लोगों को बोलने का साहस देती है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो किसी बड़े मंच पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वे चौपाल में खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव सामने रखते हैं।
1: जी जी,
0: ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि हर आवाज को महत्व मिले। श्रोताओं, किसी भी गांव के विकास की शुरुआत संवाद से होती है। जब तक लोग समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समाधान कैसे निकलेगा।
1: बिल्कुल,
0: चौपाल गांव के लोगों को एक साथ बैठने, सामूहिक रूप से सोचने का अवसर देती है। पानी की समस्या हो, सड़क निर्माण का मुद्दा हो, विद्यालय की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता, इन सब विषयों पर चौपाल में चर्चा होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, चौपाल इन समस्याओं के समाधान खोजने का एक प्रभावी मंच है। जब लोग एक साथ बैठकर विचार करते हैं, तब सामूहिक बुद्धि और अनुभव के आधार पर बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे न केवल श्रोता साथियों समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि लोगों में भी जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। ग्राम पंचायत और चौपाल का संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है, और चौपाल जनता और पंचायत के बीच की एक मजबूत सेतु का कार्य करती है।
0: जी हाँ,
1: पंचायत की योजनाएं और निर्णय चौपाल के माध्यमों से ही लोगों तक पहुंचते हैं, और वहीं जनता की समस्याएं और सुझाव चौपाल के माध्यम से पंचायत तक पहुंचते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बन पाती है।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है कि गांव की चौपाल किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। श्रोता साथियों, चौपाल सामाजिक एकता को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब अलग अलग वर्गों, समुदायों और विचारों के लोग एक साथ बैठते हैं जागृति जी, तो आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। इससे सामाजिक दूरी कम होती है और भाईचारे की भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब समाज में एकता और सद्भाव हो। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जागरूक नागरिकों का होना आवश्यक है। चौपाल लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है और इसी के साथ जागृति जी, सरकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुँचने में चौपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत होते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम चौपाल की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र केवल अधिकारों की बात नहीं करता है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये कर्तव्यों की भी बात करता है। श्रोताओं, चौपाल लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक बनाती है। यहाँ लोग सीखते हैं अंजलि कि केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, ग्राम पंचायत और चौपाल का रिश्ता बहुत गहरा होता है। पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। चौपाल पंचायत की ताकत है। चौपाल के माध्यम से लोगों की आवाज पंचायत तक पहुँचती है और पंचायत की योजनाएं लोगों तक पहुंचती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अंजलि कि चौपाल जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत पुल का काम करती है।
0: बिल्कुल,
1: जब पंचायत के निर्णयों पर चौपाल में चर्चा होती है तब पारदर्शिता बढ़ती है। जैसा कि अभी आपने बताया था, लोग जान पाते हैं कि गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कितना बजट आया है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। इससे जवाबदेही बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, युवा वर्ग भी लोकतंत्र का भविष्य है। चौपाल युवाओं को नेतृत्व, संवाद और सामाजिक जिम्मेदारी सीखने का अवसर प्रदान करती है। युवा नई तकनीकों, नवाचारों और विकास के नए विचारों को गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब युवाओं की ऊर्जा और अनुभव का सही उपयोग होता है तब गांवों का विकास और तेजी से संभव होता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि ग्राम विकास योजनाओं की सफलता भी जन भागीदारी पर ही निर्भर करती है। चौपाल लोगों को विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें तय करने का अवसर देती है। इससे जागृति जी, विकास कार्य वास्तविक जरूरतों के अनुसार होते हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही लोग विकास कार्यों की निगरानी भी करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितता पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जब लोग साथ बैठते हैं तो आपसी दूरी भी कम होती है और विश्वास भी बढ़ता है। यही विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूत भी करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओ, चौपाल हमें यही सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके जागरूक नागरिक होते हैं। चौपाल नागरिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ लोगों को सरकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक अधिकारों की जानकारी मिलती है।
0: जी जी,
1: जानकारी ही जागरूकता का पहला कदम है और जागरूक नागरिक ही अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जब महिलाएं अपने अनुभव और विचार साझा करती है तब समाज के बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और परिवार कल्याण जैसे विषय, इन सब विषयों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी होती है अंजलि। महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति लोकतंत्र को और अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाती है। इसीलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि तकनीक से जुड़े हुए आज हमारे जो श्रोता साथी है, वे नई सोच, नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यदि युवा चौपाल से जुड़ेंगे तो गांव में नई ऊर्जा भी आएगी। वे डिजिटल सेवाएं, आधुनिक खेती, स्वरोजगार और शिक्षा के नए अवसरों की जानकारी भी गांव तक पहुंचा पाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था।
1: बिल्कुल,
0: उनका मानना था कि मजबूत गांव ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। चौपाल ग्राम स्वराज की भावना को साकार करने का एक प्रभावी माध्यम है। ये लोगों को आत्मनिर्भरता, सहयोग और सामूहिक नेतृत्व की दिशा में प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इस बात की है जागृति जी कि चौपाल की परंपरा को केवल बनाए ही नहीं रखा जाए, बल्कि उसे और अधिक सशक्त बनाया जाए। चौपालों में महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी, संवाद, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। जब हर व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा तब लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे श्रोताओं कि यदि हर गांव में सक्रिय चौपाल होगी तो ग्राम सभा मजबूत होगी। ग्राम सभा मजबूत होगी तो पंचायत भी मजबूत होगी, और पंचायत मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तब देश का विकास और भी तेजी से होगा। तो साथियों याद रखिए, लोकतंत्र की जड़ें दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं बल्कि हमारे गाँव में फैली हुई है। चौपाल उन जड़ों को सींचने का कार्य करती है, इसलिए चौपाल को जीवित रखना, सक्रिय रखना और मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम अपने गांव की चौपाल को संवाद, सहयोग और विकास का केंद्र बनाएं। हम अपनी बात भी रखेंगे, दूसरों की बात भी सुनेंगे, क्योंकि जहां संवाद होता है वहां समाधान जन्म लेते हैं और जहां जन भागीदारी होती है वहीं सच्चा लोकतंत्र फलता फूलता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ हम विदा लेते हैं। बस अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जो ग्रामीण लोकतंत्र, स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, ये उदाहरण बताता है कि जब लोग एकजुट होकर अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी उठाते हैं अंजलि, तब लोकतंत्र केवल व्यवस्था नहीं रहता बल्कि जनशक्ति का सशक्त माध्यम भी बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये हमें सिखाता है कि चौपाल और ग्राम सभा केवल चर्चा के मंच नहीं है बल्कि परिवर्तन की शुरुआत करने वाले केंद्र भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई है, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
2: मनीषा और कशिश, आज हम कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल,
2: जो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या, हमारा स्वास्थ्य, हमारा व्यक्तित्व, इन सारी चीजों को निखारता है।
1: जी हाँ,
2: आज हम बात करने वाले हैं सुबह की सकारात्मक शुरुआत जो है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुंचाती है।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि

0: अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि विज्ञान अनुभव दोनों से सिद्ध बात है। सुबह का समय प्रकृति का सबसे शांत, स्वच्छ और ऊर्जावान समय माना जाता है। इस समय कशिश और मनीषा वातावरण में ताजगी बनी रहती है। पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है, हवा अपेक्षाकृत स्वच्छ होती है और मन में नई ऊर्जा भी भरी हुई रहती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें हमारे श्रोता साथियों के साथ होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें यहाँ पर पहले।
2: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम विषय से आपको रूबरू करा चुके थे और बातचीत की शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से सुबह की जो शुरुआत है सकारात्मक सोच के साथ अगर हम करते हैं तो उसके कई सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। मनीषा और कशिश, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं और सुबह जल्दबाजी में उठकर सीधे काम में लग जाते हैं। इसका असर श्रोता साथियों केवल हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मन, सोच, कार्य क्षमता और रिश्तों पर भी पड़ता है। इसलिए यदि हम अपनी सुबह को व्यवस्थित और सकारात्मक बना लें तो यह पूरे दिन के स्वास्थ्य की मजबूत नींव बन सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि सुबह का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।
2: बिल्कुल,
1: तो साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद में सुबह के समय को अत्यंत पवित्र और स्वास्थ्य वर्धक माना गया है। देखते हैं कि सूर्योदय से पहले या उसके आसपास का समय शरीर और मन को संतुलित करने के लिए जरूरी माना जाता है।
2: बिल्कुल
1: साथियों, इसी समय शरीर विश्राम की अवस्था से सक्रिय अवस्था की ओर बढ़ता है।
2: जी हाँ,
1: रात भर आराम करने के बाद हमारा जो मस्तिष्क है वो नई जानकारी ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अंजलि जी और मनीषा, शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे सक्रिय होती है और यदि इस समय हम अच्छी आदतों को अपना ले तो उनका लाभ पूरे दिन हमें मिलता है।
2: बिल्कुल
1: हाँ। साथियों, सुबह की शुरुआत केवल जल्दी उठने का नाम नहीं है, इसका अर्थ है शांत मन से दिन की शुरुआत करना, स्वयं के लिए कुछ समय निकालना, अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करना, साथ ही सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करना।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि सकारात्मक शुरुआत का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। श्रोता साथियों, इसका अर्थ है कि हम दिन की शुरुआत ऐसे विचारों और आदतों के साथ करें जो हमें मानसिक रूप से मजबूत, शांत और उत्साहित बनाए रखें।
3: बिल्कुल,
2: यदि श्रोता साथियों सुबह उठते ही हम शिकायत, तनाव या मोबाइल या नकारात्मक समाचार देखने लगे तो उसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ सकता है। लेकिन यदि हम मुस्कुराकर, कृतज्ञता, प्रार्थना, गहरी सांस लेकर और अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करी तो हम देखते हैं कि हमारा दिन है वो अधिक संतुलित रहेगा।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि सुबह की शुरुआत का मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो श्रोता साथियों, मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार होता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और काम में मन लगता है। सुबह कुछ मिनट श्रोता साथियों अपने लिए निकाले, जैसे कि ध्यान करना, प्रार्थना करना, प्रेरणादायक विचार पढ़ना और शांत वातावरण में बैठना तनाव को कम करने में मदद करता है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दिन भर उत्साह बना रहता है।
1: जी हाँ,
0: सुबह जल्दी उठने वाले लोग अक्सर अधिक सक्रिय रहते हैं, वे नियमित व्यायाम करते हैं, योग, टहलना, हल्की शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकाल पाते हैं। इससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां सक्रिय होती है और पूरे दिन का काम जो है वो करने की क्षमता बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: नियमित सुबह की दिनचर्या से थकान कम महसूस होती है और शरीर अधिक चुस्त रहता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों सुबह की धूप का भी महत्व है। जैसे कि सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए काफी जरूरी और लाभकारी मानी जाती है। इससे अंजलि जी शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी संतुलित रहती है और दिन रात का जो चक्र है वो भी व्यवस्थित होता है।
2: बिल्कुल
1: साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि सुबह कुछ समय खुले वातावरण में बिताने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव भी बढ़ता है।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे सुबह की सकारात्मक शुरुआत हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है। कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हमने जाना था कि सुबह का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमने जाना था कि सकारात्मक शुरुआत का क्या अर्थ है। सुबह की शुरुआत ही वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है। श्रोता साथियों, यही अगर बात करें कि सुबह का शांत वातावरण हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सुबह का समय अपेक्षाकृत शांत होता है। इस समय शोर शराबा कम होता है, इसलिए मन भी अधिक एकाग्र रहता है। देखते हैं कि इस समय विद्यार्थी पढ़ाई कर सकते हैं, किसान दिन की योजना बना सकते हैं, गृहिणियां बिना तनाव के दिन की शुरुआत कर सकती हैं, और नौकरी वाले लोग भी स्वयं के लिए इस समय अपने लिए समय निकाल सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए नियमित प्रयास आवश्यक होते हैं। सबसे पहले रात को समय पर सोने की आदत डालें, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाएं और उठते ही कुछ मिनट शांत बैठें। जल्दबाजी में दिन की शुरुआत करने के बजाय स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी होता है। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। प्रतिदिन 5 मिनट गहरी सांस लें, 5 मिनट प्रार्थना करें या 10 मिनट टहले, धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। श्रोता साथियों, याद रखिए कि जीवन में बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे अच्छे निर्णयों से शुरू होते हैं। सुबह का 1 घंटा यदि हम अपने स्वास्थ्य, मन और सकारात्मक सोच को दें तो इसका लाभ पूरे दिन ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में दिखाई देता है। सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम बीते हुए दिन की गलतियों को पीछे छोड़कर नए उत्साह, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है और स्वयं को बेहतर बनाने का नया संदेश भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि साथियों, सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण और कृतज्ञता भी काफी जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: क्योंकि दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव से अगर हम करते हैं अंजलि जी, तो देखते हैं कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है।
2: बिल्कुल।
1: अपने श्रोता साथियों, जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति आभार आपको व्यक्त करना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच के साथ दिन शुरू करते हैं तो मन में आशा, आत्मविश्वास बढ़ता है
2: जी।
1: और छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार व्यक्त करना मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है
2: जी।
1: साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, जैसे कि रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। सुबह उठकर 1 या 2 गिलास सामान्य हल्का गुनगुना पानी पीने से शरीर को ताजगी मिलती है साथियों।
2: बिल्कुल।
1: इससे पाचन क्रिया सही रहती है और दिन भर शरीर बेहतर ढंग से कार्य कर पाता है।
2: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल कशिश। यही अगर बात करें कि खुली हवा में कुछ समय निकालना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यदि संभव हो तो घर से बालकनी में जाएं, आंगन में या खेत या बगीचे में आप समय बिता सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ताजी हवा और शांत हवा वातावरण और मन और दोनों को सुकून देती है। पक्षियों की चहचहाट सुनना और हरियाली को देखना हमारे मन को प्रसन्न करता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे इस समय हमें योग भी करना है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का माध्यम नहीं है बल्कि मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने का तरीका है।
1: बिल्कुल।
0: नियमित योग करने से शरीर सक्रिय रहता है और मानसिक तनाव है वो भी कम होता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, कुछ समय योगासन जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और वज्रासन नियमित रूप से किए जाएं, इनके अभ्यास है वो हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं।
2: बिल्कुल। यही अब बात आती है कि गहरी और नियंत्रित श्वास का अभ्यास मन को शांत करने में सहायक होता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और गहरी सांस लेने जैसे सरल अभ्यास ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति पाने में मदद कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से दिन भर तरोताजा महसूस किया जा सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सुबह की सैर जो है वो शरीर को सक्रिय रखने का आसान और प्रभावी तरीका है। नियमित रूप से पैदल चलने से शरीर में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है और दिन भर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। यदि पार्क उपलब्ध न हो तो घर की छत, आंगन या आसपास सुरक्षित स्थान पर भी कुछ देर हम टहल सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम हमारे श्रोता साथियों से कह सकते हैं कि सुबह की अच्छी आदतें किसी दवा से कम नहीं होती साथियों। इनके लिए अधिक खर्च भी करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल नियमितता और इच्छा शक्ति जरूरी होती है।
2: बिल्कुल। हाँ।
1: यदि आप श्रोता साथियों प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने शरीर और मन के लिए निकालेंगे तो आप अधिक स्वस्थ भी रह पाएंगे, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
2: बिल्कुल। बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारे आज किस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
2: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज से ही हम सभी को यह संकल्प लेना है कि कल की सुबह से नहीं बल्कि आने वाली हर सुबह से अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हम लेकर आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: हम समय पर उठेंगे साथियों, अपने शरीर और मन का सम्मान करेंगे, सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ श्रोता साथियों अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हंगरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंगर अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
3: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बहनपुनु गीत तो आईशु पूरुन और गीत बात एक वक्त फेरी आपणे पासा फर कार्यक्रम समस्या समाधान में जिम की गीत के पहले आपणे समस्या ने बारे में जाण्यो आए से कहानी अपने हम रहो चौंगा बहनपुनु की एक छोटी सी घटना है। एक स्कूल में भणवा वाली सूरी हती ई रोज से बाजार थे की चिप्स ने नूडल ने ई खाई लेती। धीरे धीरे ई खावानू इनी पसंद बनी गयो ने घर नु खावानू इनी पसंद ने आबा लाग्यो। कुछ टाइम बाद इना शरीर में कई शका के ने पेट में दर्द ने कमजोरी महसूस थावा लगी। जई वगत इने मम्मी पापा इने अस्पताल ले गयो तो डॉक्टर ने कीधु के आ परेशानी गलत खान पान नी आदत की है। डॉक्टर ने सलाह थकी इने माँ बापे इन पौष्टिक आहार में भोजन फल ने दूध आलू शुरू करो। धीरे धीरे इन सेहत में सुधार थे क्यों अणी घटना थे कि आपड़े हीक ले सको कि आपड़े खान पान नी आदत जे है ई हीदु असर करे है आपड़े स्वास्थ्य माते।
1: हो अंजलि बोन इना साथे आपड़ी बोनो ने आपड़े बताड़ो चाहूंगा कि आपड़े जे जंक फूड नी आदत है ई केम वधी रही है आपड़े भाई बोनो ने आपड़े बताड़ो। तो पहलू कारण है कि आकर्षक विज्ञापन ने स्वाद ने कारण टीवी मोबाइल ने सोशल मीडिया माते फास्ट फूड आपने ने आकर्षक करे है तो आपने जल्दी प्रभावित थी जाए। बीजू कारण है आपड़ी व्यस्त जीवन चली जेम की आपने पहले भी कीधु तो कि घणा मन का एवं है कि ई जल्दी जल्दी में इन्हें एम लगे कि आपने बनने नु खावा नु ली आवा तो आपने ने टाइम बची जागा। तीसरो कारण है कि आपने जे दोस्त रहे इन्होंने माहौल आलवो जुवे तो एवं में हूँ करा तो एवं में भी आपने बाढ़ने से लज खावा बल्ले। तो આપણે દેખ અંજલિ બોન કે ઘણા સુરન ઘણા યુવા આપણે દોસ્ત ને દેખીને ભી જંક ફૂડ ખાવા લાગી જાય છે। ચોથું કારણ હે કે સુવિધા ને ઉપલબ્ધતા યાની કે આસે લગભગ આપણે હર બાજાર ને ગલી માં ફાસ્ટ ફૂડ આસાની થકી મળી જાય હે એટલે મન કને એમ લાગે કે આપટી ઓર આકર્ષિત ને આપણે આને ખાવું જોઈએ હે। તો ભાઈ બોન આપને કંગા કે આ તો જંક ફૂડ ની આદત કેમ વધી એના બારે બતાડ્યું આઈસ અગર સમાધાન હું થઈ શકે એના બારે આપને બતાડો તો હવે સવાલ આવે

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: भाइयों ने बोनो जईवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियों बोनों रिश्तों है जे जंगल में हमसे हैं ये ननी रक्षा करे हैं। तो आवो बोना नी भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना नी आवाज विकास नी असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।